हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
7: पंहिंजे मौक़ुफ़ खां आगाह कयो, स्पीकर आया सादे ॻाल्हियुनि लाइ अहम किरदार अदा कयो। ॻाल्हियुनि में हुकूमत तरफ़ां घरो वज़ीर मोहसिन नक़वी, राणा सनाउला, अमीर मक़ाम तारिक फज़ल चौधरी ऐं तलाल चौधरी शरीक थिया। पीपुल्स पार्टी जी नुमाइंदगी श्री रमा नवीद कमर ऐं एजाज़ जखराणी कई। पीटीआई वफ़द में बैरिस्टर गो राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम, राजा असद कैसर, आमिर डोगर ऐं हलीम आदिल शेख शामिल हुआ।
8: ये पहला मरतबा है कि हमारी और हुकूमत की ऐसी कमेटी बनी है जिसमें हम सारे लोग मौजूद है स्पीकर साहब के चैम्बर में। मुस्बत पहलू यही है कि कंटिन्यू है, कल इंशाल्लाह ताला
9: हमारा गवर्नमेंट से भी तो नुमाइंदान शामिल होंगे,
8: यही कमेटी होगी, यही हमारी कमेटी है। खान साहब के जो अहकाम होते हैं हम हमेशा खान साहब के अहकाम ही पे अमल दरामद करते
10: रहे। असल ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे, कल फिर मीटिंग होगी, बातचीत होगी, उसके बाद फिर फैसला होगा क्या करना है।
7: हुकूमत सां सुठे माहौल में ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर अॼु मंझंदि 2 वॻे थींदो। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर चयो आहे त उमेद आहे त सूरत हाल बहितरी तरफ़ वेंदी। सेनेट में अपोज़िशन लीडर चयो त असां पंहिंजूं तजवीज़ूं ॾिनियूं आहिनि, हुकूमत पंहिंजूं तजवीज़ूं ॾिनियूं आहिनि, ॿीहर ॻाल्हियूं अॼु थींदियूं।
11: दहशतगर्दी की कोई मैसेज चल रही है।

नम जहिड़ी सूरत आलिया वगोर पैदा करण वारी कोशिश के सख्ती सां मुंह डि॒नो वेंदो। कोर कमांडर वाज़े करे छॾियो आहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी सदारत हेठि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल जो जाइज़ो वरितो वियो। हर क़िस्म जे ख़तरनि खे मुंहुं ॾियण लाइ आला सतही ऑपरेशनल तयारी बरक़रार रखण वारे आज़म जो वर्जाओ, पाकिस्तान जे दिफ़ाई हक़ वारे आज़म जो तौसीक, अफ़गानिस्तान मां जनम वठंदड़ दहशतगर्दी ख़िलाफ़ टारगेट कार्रवायूं जारी रखण वारे आज़म जो वर्जाओ, दहशतगर्दनि जे सहूलतकारी कंदड़ तालिबान क़यादत नतीजनि जो ज़िमेवार करार, दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जी साराह, नेशनल एक्शन प्लान तहत अवाम जी इतफ़िलाह ते ॿधल हुकमरानी, दहशतगर्दी इदारनि जे गठजोड़ जो ख़ात्मो ऐं पुलिस जे सग में वाधंटर करार, ISPR मूजिब कंहिं बि बहाने सां इंतिशार पखिड़ण या नवमय जहिड़ी सूरताल पैदा करण वारी कोशिश खे कानून मूजिब बिना कंहिं फ़र्क़ जे फ़ैसिलाई ते अंदाज़ में नाकाम बणायो वेंदो। फोम पारां पाक सऊदी ऐं तुर्किया दिफ़ाई मुआदे जे आजियां कश्मीरियुनि जे इख़लाक़ी मदद जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाओ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो त क़ौम जी हिमायत सां फ़ौजी मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी इलाइक़ाई सालमियत ऐं क़ौमी सलामती जे तहफ़ुज़ लाइ तयार आहे। हुकूमत हफ़्ते जे आख़िर में ईंदड़ टिनि ॾींहनि लाइ पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाधि करे छॾी। पेट्रोल 2 रुपया 10 पैसा ऐं डीज़ल 3 रुपया फी लीटर महांगो। पेट्रोल जो नओ अघु 392 रुपया 76 पैसा ऐं डीज़ल जो नओ अघु 399 रुपया 64 पैसा थी वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीज़ल जा नवां अघु 3 खां 5 अक्टूबर ताईं लागू हूंदा। हुकूमत जो सोमालिया में शहीद थियल टिनी पाकिस्तानियुनि जे पोयरनि लाइ माली मदद जो ऐलान। शहीदनि जे पोयरनि खे 1.25 करोड़ रुपया ॾिना वेंदा। शहीद थियलनि जे ॿारनि लाइ मुफ़्त तालीम, तिबी सहूलियतुनि ऐं रिहाइश जो ऐलान बि कयो वियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां शहीद काशिफ़ उमर जे पुट सां राब्तो करे तज़ियत जो इज़हार। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे, तव्हां जे डुख में बराबर जा शरीक आहियूं, अकेलो न छॾियो वेंदो। ॿी पाकिस्तानी अमले जे हिफ़ाज़त सां वापसी लाइ हर मुमकिन क़दम खयो वियो।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: डी क्रीम असली ग्लो इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: GFM KTN अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।

0: हुकूमत जी पीटी आई विच में ॻाल्हियुनि जो बयान थींदो। हुकूमत जी पीपल्स पार्टी रखण ऐं अॼु ॿीहर गॾिजाणी करण ते इतफ़ाक़। स्पीकर ऑफिस पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त हुकूमत पीपल्स पार्टी ऐं अपोज़िशन विच में मुल्की सियासी हलियूं थियूं। हुकूमत पीपल्स पार्टी ऐं अपोज़िशन हिक ॿिए खे पंहिंजे मौक़िफ़ खां आगाह कयो। स्पीकर आया सादी ॻाल्हियुनि लाइ अहम किरदार अदा कयो। ॻाल्हियुनि में हुकूमत तरफ़ां घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी, राणा सनाउल्ला, अमीर मक़ाम तारिक फज़ल चौधरी ऐं तलाल चौधरी शरीक थिया। पीपुल्स पार्टी जी नुमाइंदगी श्री रमा एजाज, पीटीआई वफ़द में बैरिस्टर गौर, राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम, राजा असद कैसर, आमिर डोगर ऐं हलीम आदिल शेख शामिल हुआ।
1: केवल हुकूमत की ऐसी कमेटी बनी है कि चैम्बर में मुस्बत पहलू यही है कि कंटिन्यू है, कल इंशाल्लाह ताला
2: हमारा गवर्नमेंट से भी कोई नुमाइंदान शामिल होंगे,
1: यही कमेटी होगी, यही हमारी साहब के जो अहकाम होते हैं हम हमेशा खान साहब के अहकाम ही पे अमल दरामद करते रहे।
3: असल ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे, मुझे फैसला अगर क्या करना है।
0: हुकूमत सां सुठे माहौल में ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर अॼु मंझंदि 2 वॻे थींदो। बैरिस्टर गौर चयो आहे त असां पंहिंजूं तजवीज़ ॾिनियूं आहिनि, हुकूमत ॾिनियूं आहिनि, ॿीहर ॻाल्हियूं अॼु थींदियूं।

0: पीपल्स पार्टी पीटीआई का एक भेरो बीहर लाग मार बीहर मशरूत तौर खत्म करने जो मुतालबो कर छो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो सरदार हुकूमत मुखालिफ धुर विच में गाल सुठो साउंड करार डेंदे मुखालिफ धुर पांजो लांग मार गैर मशरूत तौर खत्म कंदी। पाड़ेसरी मुल्कन मां दहशतगर्द ग्रुपन के मिलंदड़ फाल हमायत गणती जोगी है। सेनेटर श्री रमा लांग मार्च की तारीख वधाण या मुलतवी करण से मसलो हल न थींदो। पीटीआई लांग मार्च खत्म करे। इस्लामाबाद में कोप रोड बंद न हाईकोर्ट की हिदायतों से एहतियाती तौर कंटेनर्स रखा वाया। हिफाजती कदम जो मकसद शहरियों के जान माल बुनियादी ढांचे असास ठिकाणन तहफुज है।
1: ले आए मॉस्पिल जो करे मच्छरों से घंटों फाइट दे अप टू 8 आवर्स प्रोटेक्शन मच्छर आपसे दूर रहने
0: में लागापियल पार्टी के माजी के परतशद्दुद वाक्यन के ब नजर आडो रखियो वियो आहे। इस्लामाबाद में शहरियों के कानूनी चिरपुर जारी आहे। कंटेनर के मौजूदगी के रोडन के बंदिश करार डण हकीकतुन जो उबतड़ आहे। अड़ी नोयत के मुख़्तरफी रिपोर्टिंग अवाम में गुमराह कंदड़ नाकारी तासुर पैदा करे थी। नव मई जड़ी सूरत हाल या वगोड़ पैदा करने वाली कोशिश के सख्ती से मुंह दिनों वो कोर कमांडर वाजे कर छो है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदारत हेठ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल जो जायजो वरतो हो। हर किस्म के खतरन के मुंह दियण लाइ आला सतही ऑपरेशनल तैयारी बरकरार रखने वाले आजम जो वर्जाव। पाकिस्तान के दिफाई हक वाले आजम जो तौसीक। अफगानिस्तान में जन्म वठंदड़ टारगेट कार्रवाई जारी रखने वाले आजम जो वर्जाव। दहशतगर्दन के सहूलतकारी कंदड़ तालिबान क्यादत नतीजन के जिम्मेवार करार। दहशतगर्दन खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की सारा। नेशनल एक्शन प्लान तवाम के फिलहाल बदल हुकुमरानी। दहशतगर्द इंदोहारन के गठजोड़ जो खात्मो पुलिस के सग में वाद हंटर करार। एसपीआर मौजूद कें बहाने सा इंतशार पखेण या नव मई जड़ी सूरताल पैदा करने वाली कोशिश के कानून मूजिब बिना फर्क के फैसलाइते अंदाज में नाकाम बढ़ाया वो। फोम पारा पाक सऊदी ए तुर्किया दिफाई मुआदे के आजियां कश्मीरियों के इखलाकी मदद जारी रखने वाले अजम जो वर्जाव। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कौम की हिमायत से फौजी मुल्की खुदमुख्तियारी इलाकई सालमियत कौमी सलामती के तहफुज लाइ तैयार है।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
5: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
6: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
7: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
8: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
7: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
8: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
9: सुपर वाइट।
10: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अरे न खुश और बीरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज और डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहे में आहिन चावरन जो खूबियों और कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन्हें जी नमी के लॉक करे और चावरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस और झुरन के घट कन और रिंकल्स के घट करे सिर्फ 3 दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम और ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसे हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
5: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मुठियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
5: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
6: ढाडो सुठो
5: जीए FM 88 नेटवर्क
7: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
5: ब्रॉट टू यू बाय
6: सुपर वाइट्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
7: केपी के बलोचिस्तान में कार्रवाइयों 11 दहशतगर्द मार जी वया। सिक्योरिटी जरिए मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेज ॾखण वज़ीरिस्तान में फितरल ख़ारिजीन जे दहशतगर्दनि जे थाकन खे निशानो बणायो। कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारिजी विया बलोचिस्तान में। ऑपरेशन रदुल फितना 3 बि जारी आहे। माशकेल में पुलिस चौकीअ ते हमले बाद फरार थींदड़ 6 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी जे मुकमल ख़ात्मे ताईं पुरज़म आहे। हुकूमत ऐं अपोज़िशन ॻाल्हियुनि जो ॿियों दौर अॼु शुरू थींदो। ज़रियनि मूजिब अपोज़िशन पंहिंजा मुतालबा हुकूमत खे पेश करे छॾिया आहिनि। पीटीआई बानी जे अस्पताल मुंतकिलीअ जे अदालती फ़ैसिले ते अमल करण जो मुतालबो। हुकूमत अपोज़िशन खां लॉन्ग मार्च मुलतवी या ख़त्म करण जो मुतालबो कयो आहे। अदालती फ़ैसिले ते अमल दरामद जी ख़ातिरी बि कराई। हुकूमत हफ़्ते जे आख़िर में ईंदड़ 3 ॾींहनि लाइ पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाधि करे छॾी। पेट्रोलियम 2 रुपया 10 पैसा ऐं डीज़ल 30 रुपया 30 पैसा फी लीटर महांगो। पेट्रोल जो नओं अघु 392 रुपया 76 पैसा ऐं डीज़ल जो नओं अघु 399 रुपया 64 पैसा थी वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन। गंबट में आर्य जा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़े में मारिजी वियल हिकु ॼणे जो केस दाख़िल। नौजवान अजीब आर्य जो जे क़तल जो केस संदसि अमर जी फरियाद ते टिन जवाबदारनि ख़िलाफ़ दाख़िल। मुख्य जवाबदार ताहिर आर्य जो गिरफ़्तार। जमाल शाह भरसां बारडो वाटर कोर्स में ॿुॾी फोत थी वियो। गोट जाम खान ज़रदारी में 12 वरनि जो अहमद ज़रदारी वाटर कोर्स में ॿुॾी फोत थी वियो। वारसनि मूजिबि नींगर मिर्गीअ जो दौरो पवण सबबि वाटर कोर्स में किरी ॿुॾी फोत थी वियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है तो

0: स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की। ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
1: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
0: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
1: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
2: सुपर वाइट।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, अरकुन निसा, जिस्मानी असाबी और दिमागी कमजोरी, मर्दाना और जनाना पोशीदा अमराज के इलाज के लिए तशरीफ लाएं। एड्रेस: आलमानी मेडिकल।

पता कर लोगों के दिलों को चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामुअलैकुम। यू आर शोइंग इन टू रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सा दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार सिंध की आवाज। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप कि जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं पूरे पूरे एक बजे तक। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है। जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स। सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स जो कि आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं 11:14 जो कि पाकिस्तान का मेरी वक्त है, तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है। वो तमाम तो लोग जो कि हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हाँ वो सेफ सेफ जाए नहीं बट अल्लाह अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। खुदा खैरियत है मौजूदा और तब के लिए खुदा खैरियत है मतलू।

वो तमाम तो लोग जो लोग यहाँ सालगिरह उनको कहेंगे मनी मनी हैप्पी बर्थडे टू यू. इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ नहीं स्पेंड करना चाहते हैं, विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए. इसके अलावा शोबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबा बेगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आदिल जी आया नसर बिस्मिल्लाह वजर चाओ निहाओ एंड वेलकम टू जिंदगी गुलजार है. प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को और वो सारी बातें सुपरवाइज बाय अक्सर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स को लेकर जो मैं आपसे करना चाहती हूँ जो आप मुझसे करना चाहते हैं वो सब आपसे करेंगे. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना और इसी के साथ हम चलेंगे आगे. एंड हियर कम्स आसिम अज़हर विद द ब्यूटीफुल सॉन्ग. सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, आगे चलते हैं.

Okay, जी जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स और इसी के साथ हम चलेंगे आगे जी और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स के टाउन से ही आप ये प्रोग्राम सुन रहे होते हैं। ये खूबसूरती भरा खूबसूरत से सफर जो कि पूरे पूरे एक बजे तक डेली बेसिस पे आप लोग इंजॉय कर रहे होते हैं सो एग्जैक्टली आज भी करेंगे। एंड सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात की जाए तो हमेशा की तरह सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स सुपर से भी ऊपर हैं और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि वो लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। और सुपर वाइट के प्रोडक्ट में सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी सोप और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि आप लोग यूज कर रहे होते हैं या अगर आपने अभी तक यूज नहीं किए हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है जी, सुपर वाइट की वाइटामिन सी ब्राइटनिंग क्रीम आती है, सुपर वाइट का वाइटामिन सी फेस वॉश आता है, इसके अलावा सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम आती है, सुपर वाइट का स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश आता है, इसके अलावा सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम आती है, सुपर वाइट का एंटी डलनेस फेस वॉश आता है, ये आता है टर्मेरिक, ठीक है, और सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम आती है, सुपर वाइट का राइस ब्यूटी सोप आता है, सुपर वाइट का राइस कोलेजन एंटी एक्ने क्रीम भी आती है, और इसके अलावा इनका एक अदद सुपर वाइट राइस सीरम भी आता है जिसको इंक्लूड करने से, जिसको ऐड कर देने से आपके जो क्रीम के रिजल्ट हैं वो डबल से ट्रिपल हो जाते हैं और मजीद और इन्हेंस हो जाते हैं, तो ये कमाल की बात है। इसके अलावा सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी सोप, इसके अलावा सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, ठीक है, तो ये है सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स। और जी सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम जिसको हम बूस्टर भी कह सकते हैं जी, अल्फा आरबोटीन इसमें मौजूद है, नाइसिनमाइड इसमें मौजूद है, वाइटामिन B3 एंड कोजिक एसिड इसमें मौजूद है, तो ये तमाम प्रोडक्ट्स जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपकी स्किन हो रही है डल, आपकी स्किन हो रही है बेरोनक और आपका कॉम्प्लेक्शन हो रहा है डाउन, या फिर आपके फेस के ऊपर हो रही है एक्नी, एक्नी के निशान, बहुत सारी छाइयां, ये सब कुछ हो रहा है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन को खत्म करने वाली बात है और वो बात है जी सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स की। सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स की बातें हम आपसे पूरे पूरे एक बजे तक करते रहेंगे और आप हमसे करते रहेंगे, तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने सबसे पहले बाय करना है मार्केट जाके, ठीक है। अब कौन सा किस लिए बाय करेंगे वो तो आपको दो दिन में अंदाजा हो ही चुका होगा, लेकिन जिन लोगों को अभी तक अंदाजा नहीं हुआ है उनको अंदाजे हम लगवा देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। सो जी सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि आप लोग यूज करेंगे, इसके फॉर्मूलाज भी बना के आप लोग यूज कर सकते हैं, आप फॉर्मूला कैसे बनाना है वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, और जिन लोगों को नहीं पता उनको पता चलेगा। और जो कोरियन ग्लास स्किन हासिल करना चाहते हैं या अपनी स्किन को बनाना चाहते हैं, तो कोरियन ग्लास स्किन को बनाने के लिए आप लोग यूज करेंगे सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट का राइस फेस वॉश, ठीक है, तो इसको यूज करने से आपकी जो डलनेस है वो खत्म होती है, चेहरे के ऊपर ग्लो आता है, ओपन पोर्स मिनिमाइज होते हैं और आपकी खूबसूरती बढ़ती चली जाती है डे बाय डे।

0: साथ साथ आप लोग प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी. और प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए आप लोगों ने करना यह है कि सबसे पहले वो तमाम तो लोग जो कि सिंपली मैसेज करना चाहते हैं, जो सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 1 पे. और कॉमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा, दैट इज www.facebook.com/gfm88 और जी लालकाना FM 88.8. इस पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है एक अदर लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग जो कि होती है जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर 03000113488. इसके ऊपर कॉल करेंगे आप लोग, ठीक है, और मुझे ज्वाइन करेंगे. और ज्वाइन करने के बाद मुझसे बात करेंगे, ठीक है. तो जी इसके अलावा हम चलेंगे आगे और प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे एक और गाना. और वो जो एक और गाना है मैं सोच रही हूँ कौन सा होना चाहिए, और वो गाना बड़ा अच्छा होना चाहिए, तो हम अच्छा सा गाना प्ले करेंगे.
1: पास हो मानू मैं सारी अपनी गलती, तू मेरे साथ में कोई गलती, जे तू कवे तेरा मजनी मैं दिल.
0: और गाना प्ले करने जा रहे हैं जी एक और ब्यूटीफुल, एंड हियर कम्स द ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय बिलाल महेसर. इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट बाय एक्सागर कॉस्मेटिक्स.
2: तो उन्होंने दोस्त होने के वटी हकीम ने आशिक ॾिसी हकीम खे खिले पियो. हकीम पुछो त छोकिरो हिली

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई
2: पिता ते अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं,
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
3: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
5: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: अरे न, खुश्क ऐं बेरोनकी स्किन, हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट। पर इहो कीअं? तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे। सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
0: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: जो इलाज ऐं भगल हॾन जो ऑपरेशन बेहतरीन नमूने कयो वेंदो आहे। एड्रेस कराची मेडिकल सेंटर लग घिंटी फाटक लाड़काणो। टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं, आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 3 बजे ताईं ऐं छंछर ते क्लिनिक बंद रहंदी। डॉक्टर साहब हर अंगारे ते शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं शान मेडिकल सेंटर वकील कॉलोनी लाड़काणे में मरीजन जो मुफ्त मुआइनो कंदा। राब्ते जे लाइ मोबाइल नंबर 0318794117 and 0333-7540-661
3: GAFM 88 Network
1: सिंध की आवाज के पेज के ऊपर और जी लाल गाना FM 88.8 के पेज के ऊपर आपको मिलती है लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं जी। और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि आपको दे रहे हैं बहुत ज्यादा खूबसूरती बहुत ज्यादा अट्रैक्शन क्योंकि जब इंसान खूबसूरत होता है कहते हैं ना कि जब खूबसूरती आती है ऐसे ही कुछ कहते हैं ना कि जब खूबसूरती आती है तो नजाकत आ ही जाती है ऐसे कुछ है कुछ कहते हैं ऐसे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा लेकिन है यही तो बिल्कुल नजाकत भी आएगी और अगर कोई नजाकत नाम का बंदा लगाएगा तो डेफिनेटली उसके पास डबल नजाकत हो जाएगी क्योंकि उसका नाम भी नजाकत और प्रोडक्ट्स यूज करने से भी नजाकत आएगी तो क्या बात है। अच्छा सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि आप लोग यूज करेंगे और यूज किस लिए करना है क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसले हैं स्किन को लेकर और वही बहुत सारे मसले मसाइल जिनको देखते हुए सुपर वाइट अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि आपका दिल खुश हो जाता है। तो अगर आप भी किसी न किसी डलनेस का शिकार हैं या एक्ने का शिकार हैं, एक्ने को फेस कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्शन है डाउन कॉम्प्लेक्शन को फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे? सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम को। अच्छा सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम खास तौर पे उन लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है जिनके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है। पिगमेंटेशन हम किसको कहते हैं जी? छाइयों को। छाइयां जब फेस के ऊपर हो जाती हैं तो वो काफी टाइम तक नहीं जाती। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे खाने पीने से एलर्जी हो जाती है, एलर्जी की वजह से भी हो जाती है, या बहुत सारे लोग जो कि आयरन कंज्यूम नहीं कर रहे होते उसकी वजह से भी हो जाती है तो उसको खत्म करने में एक अरसा लग जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अरसा ना लगे और ये जल्दी जल्दी से जो है खत्म हो जाए और इसमें कोई बेहतरी नजर आ जाए तो आप लोगों ने यूज करनी है सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम। सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम जो कि एंटी एजिंग भी है और आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को मुकम्मल तौर पर खत्म करेगी क्योंकि विटामिन सी पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और बहुत ज्यादा मुफीद होता है। तो पिगमेंटेशन को खत्म करेगा और विटामिन सी ब्यूटी क्रीम जो कि सुपर वाइट वालों की है इसमें बहुत सारे ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो कि आपकी स्किन से पिगमेंटेशन का नामो निशान तक खत्म कर देंगे। इसमें मौजूद है लेमन के नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स और नीम के एक्सट्रैक्ट्स और विटामिन सी तो ये सब कुछ मिलकर आपकी स्किन से खत्म करते हैं जी एंटी एजिंग लाइन्स को ब्राइटन अप करते हैं आपकी स्किन को पोर्स को मिनिमाइज करते हैं। अब इसके फायदे गिनते जाएं और आपकी ब्लेमिशेस को खत्म

0: करते हैं, डार्क स्पॉट्स को खत्म करते हैं, एजिंग स्पॉट्स को रिड्यूस करते हैं जी, और फेयरनेस को इंक्रीज भी करता है। ठीक है जी, तो ये इतने सारे फायदे जो कि एक ही ब्यूटी क्रीम के अंदर मौजूद हैं, और वो ब्यूटी क्रीम है सुपर वाइट की वाइटनिंग विटामिन सी ब्यूटी क्रीम। मजे की बात यह है कि इसमें एक्टिव फ्रूट बूस्टर्स भी मौजूद हैं जो कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, तो ऑल स्किन टाइप्स वाले लोग इसको लगा सकते हैं। चाहे आपकी स्किन नॉर्मल हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, तो ये सबको खत्म करेगा। मतलब कि सारी स्किन टाइप से सारे मसले मसाइल को खत्म करेगी विटामिन सी की क्रीम सुपर वाइट वालों की। ठीक है जी, तो सुपर वाइट की ये क्रीम जो कि लाइट वेटेड है, डेली यूज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको डे में भी अप्लाई कर सकते हैं, नाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो नेचुरली कॉम्प्लेक्शन डाउन हो चुका है उसको रेडिएंट करेगा, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाएगा, आपकी स्किन को रिफ्रेश करेगा। और आप लोगों ने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इसको यूज करना है, यूज करने से पहले विटामिन सी फेस वॉश से फेस को वॉश करना है, सुपर वाइट का विटामिन सी फेस वॉश, उसको अच्छे तरीके से फेस को वॉश करें उससे, एंड इसके अलावा ड्राई होने तक छोड़ दें, और फिर ड्राई होने के बाद अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें विटामिन सी की क्रीम, सुपर वाइट की विटामिन सी ब्यूटी क्रीम, और सुपर वाइट की विटामिन सी ब्यूटी क्रीम को अप्लाई कर लें जेंटली अपने फेस के ऊपर, अपने नेक के ऊपर। ठीक है जी, तो आप इसको हाथ और पांव पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई हल्की फुल्की टैनिंग हो गई है गर्मियों की वजह से, खैर अब तो गर्मी जा रही है, तो गर्मी जो टैनिंग छोड़ गई है उसको भी तो खत्म करना है ना, तो गर्मी की टैनिंग को खत्म करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं अपने हाथ और पांव के ऊपर भी, तो ये आप लोग कर सकते हैं, तो आपको इसके बहुत ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, साथ साथ हम कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ भी मूव करते हैं जी, एंड कमेंट्स और मैसेजेस जो कि आप लोगों के मुझे बहुत सारे रिसीव होते जा रहे हैं, साथ साथ आप लोगों की कॉल्स को भी इंटरटेन करेंगे हम। एंड मुश्ताक अहमद कुंबर से हमें सुन रहे हैं, आपका प्रोग्राम बहुत नाइस है, थैंक यू सो मच। रशीद खोसो हमें सुन रहे हैं, अब्दुल रजाक कुंबर से हमें सुन रहे हैं, अर्ज मोहम्मद गोला हमें सुन रहे हैं जी, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जी अर्ज मोहम्मद गोला, इसके अलावा हाफिज यूनुस बाबर हमें सुन रहे हैं, मलिक नजर मोहम्मद हमें सुन रहे हैं जी, थैंक यू। कॉल्स का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, लेकिन कॉल्स को लेने से पहले मैं कॉल्स का रूल बता दूं जरा, वो लोग जिन लोगों ने कल और परसों कॉल की थी वो आज कॉल नहीं करेंगे, डेली बेसिस पे वही चार पांच कॉलर्स सेम नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये हम नहीं करेंगे, और इस बात का खास ख्याल रखते हुए आप ये ना कहिएगा कि आपने कॉल ड्रॉप कर दी, अगर आपने कल कॉल की है आज कॉल करेंगे, ठीक है, मैं कॉल ड्रॉप कर दूंगी, तो बेहतर है कि आपने दो दिन का गैप देके कॉल करनी है, तो आप लोगों की कॉल्स को हम रिसीव करेंगे, और जब हम कॉल्स को रिसीव करेंगे तो फिर अच्छा भी लगेगा कि देखिए बहुत सारे लोग नए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बहुत सारे हमारे जो पुराने लिसनर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ में कॉपरेट भी कर रहे हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो ये चीज है, तो जरूर 03000113488 के ऊपर आप लोग कॉल कर रहे हैं मुझे, और फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, मैं उम्मीद करूंगी सेम कॉलर नहीं होगा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: हाफिज लखमीर मोर बात हुआ, हाफिज लखमीर मोर से बात कर रहा हूँ।
0: हाफिज लखमीर कैसे, ठीक ठाक?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक है?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी जी, प्रोग्राम सुन रहा हूँ। सुपर वाइट आयल ब्यूटी क्रीम, आयल थ्री ब्यूटी क्रीम,
0: सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम। तो सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम कब यूज कर रहे हैं, और सुपर वाइट का कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे?
1: हम बस इंशाल्लाह आज लेने जाएंगे।
0: ओके, जरूर लीजिए, और लेने के बाद जो रिजल्ट मिले मुझे जरूर बताइए। अच्छा, हमारा सेगमेंट है जी सुर लगाओ गाना सुनाओ, तो सुर लगाओ गाना सुनाओ में कौन सा गाना सुना रहे हैं जल्दी से?
1: हाँ, गाना सुनाओ आपको।
0: यस,
1: और प्ले करना, ठीक है?
0: ओके,
1: सिंगर का नाम मुझे नहीं आ रहा, लेकिन प्ले करना।
0: ओके,
1: ओ दिल वारा सुखे किया विसारा तो में सजन मुझो सा, वही कसा खड़ा बिछड़ वारो अला हुआ।
0: ओके वेरी नाइस थैंक यू सो मच बहुत सारा ख्याल रखें
1: हमारा दोस्त है
0: हाँ जी
1: हाफिज सावर ढिलू साहब शमी ढिलू साहब हाफिज जानम ढिलू साहब सरदर्द और मुस्कान साहब और जो भी सुन रहे हैं सबको मेरी तरफ से सलाम
0: ओके जी थैंक यू सो मच और मेरे ख्याल से ये रहा आपका गाना

I'll give you a beautiful song, just like Super White Strawberry Korean Formula Beauty Cream. और ये कोरियन फॉर्मूला जो कि आपकी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन देगा. देखें, एक राइस ब्यूटी क्रीम है इनकी जो कि कोरियन फॉर्मूले से तैयार की गई है. एक सुपर वाइट की कोरियन फॉर्मूला स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम है. स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर में 3 दिन में विजिबल रिजल्ट्स देगी. ठीक है, तो जिन लोगों को खाने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉबेरी पसंद है, अब वो लगाने में भी पसंद करें इसको और लगाएं सुपर वाइट का कोरियन स्ट्रॉबेरी फॉर्मूला जो कि आपको मिल जाता है सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम में स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट के साथ. बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस, बहुत खूबसूरत टेक्सचर और बहुत ही खूबसूरत बना देने वाला फॉर्मूला. पहले 3 दिन में रिजल्ट देखेंगे. तो अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ग्लो के लिए बनाते हैं. क्वालिटी पे कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और क्वालिटी वाइज बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट. और जब लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट मिलेंगे तो वो उससे भी कई ज्यादा

और इसके साथ अगर इसके रिजल्ट को डबल इनहेंस करना चाहते हैं तो जी इसके साथ यूज करेंगे सुपर वाइट की कोरियन फॉर्मूला स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश, ताकि आपके जो रिजल्ट हैं वो डबल से ट्रिपल हो जाएं और पहले ही तीन दिन में आप ये वाजे फर्क देखेंगे। और हम साथ में गाना भी चेंज करेंगे एंड मैं सोच रही हूँ कि अच्छा सा गाना हम प्ले कर दें एंड अच्छा सा गाना हम प्ले करेंगे। और मैंने बड़े अच्छे अच्छे गाने सर्च करके आप लोगों के लिए रखे हुए हैं जी, और रखने से मकसद ये है कि सुनाने भी हैं आपको। तो हम प्ले करते हैं जी एक ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड हियर कम्स हसन रहीम एंड नताशा नूरानी। सुनेंगे इस गाने को, जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक और न्यूज ब्रेक की जाने, दोनों के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
4: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
3: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।
7: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: खंग बलगम में रत अचण रेजस फिफड़न में जारो ए पानी जो भरजण दम ए सहको साह की तकलीफ ए छाती के कैंसर जो इलाज कयो वञे थो। प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर अली फुलपोटो फिफड़न जे बीमारियों जो माहिर एड्रेस इंडस हॉस्पिटल लेडीज जेल रोड लाड़काणो। क्लिनिक टाइम रोजाना सुबुह जो 10 बजे का मंझंद जो 1 बजे ताई शाम जो 4 बजे का रात जो 9 बजे ताई आचर जे डी सुबुह जो 10 बजे का शाम जो 4 बजे ताई जुमे जे डी क्लिनिक बंद रह राबते के लिए 07440553777 और मोबाइल नंबर 03012664639 याद रखंदा अपॉइंटमेंट टेलीफोन और मोबाइल नंबर के जरिए भी दिनी विंदी आहे।
3: अजरक के रंगों से रंगी
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
3: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। Rockin' the party.

वेलकम बैक वंस अगेन. आ गए वापस. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइपर बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स. और आप सुन सकते हैं पूरी 1 बजे तक.

0: सुपर वाइटी प्रोडक्ट्स और सुपर वाइटी प्रोडक्ट्स जिसमें आती है जी इनकी पेट्रोलियम जेली एंड फेस वॉशेस की बड़ी अच्छी रेंज. अच्छा मैं ब्रेक में इसके फेस वॉशेस की रेंज को देख रही थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी. मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा फेस वॉश इसमें से अगर मुझे चूज करना पड़े तो मैं कौन सा करूँगा, क्योंकि मुझे सारे ही अच्छे लगे. और पैकेजिंग इतनी कमाल की है ना, पैकेजिंग देख के ही आपका हर प्रोडक्ट पे दिल आ जाए, क्योंकि हमेशा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है ना वो बताती है कि प्रोडक्ट कैसी होगी. तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत कमाल की है, बहुत जबरदस्त है जी. और ऐसी पैकेजिंग है कि देखते साथ ही आपका दिल आ जाए. तो फेस वॉशेस की रेंज में इनका राइस फेस वॉश आता है, टर्मेरिक फेस वॉश आता है, इसके अलावा जी इनका कौन सा फेस वॉश आता है, इनका विटामिन सी फेस वॉश आता है. विटामिन सी फेस वॉश बड़ा कमाल का फेस वॉश, और सुपर वाइट टर्मेरिक फेस वॉश, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, तमाम उन लोगों के लिए जिनका फेस ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है. ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन उस स्किन को कहा जाता है जिनका जो टी जोन एरिया है फेस का, यानी कि नोज से लेके कुछ फोरहेड का कुछ चिन तक, तो ये टी जोन एरिया कहलाता है जी. और ये आपका ऑयली है और बाकी सारा ड्राई है, तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन. ठीक है, इसमें आपकी ऑयली स्किन भी आ गई, इसमें बाकी सारी आपकी ड्राई स्किन आ गई, तो ये कॉम्बिनेशन स्किन है आपकी. अगर आपका कुछ फेस का हिस्सा ऑयली रहता है और कुछ ड्राई रहता है तो उसको हम कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं. और जिन लोगों का पूरा फेस ही ऑयली रहता है तो उनकी स्किन टाइप है ऑयली. ठीक है, तो दोनों ही इसको यूज कर सकते हैं ऑयल कंट्रोल करने के लिए. और ऑयल कंट्रोल करेंगे इससे और फेस को इससे वॉश करेंगे, दिन में जितनी भी बार फेस को वॉश करेंगे और देखेंगे कि ऑयल कंट्रोल फेस वॉश को यूज करने से क्या फायदे आपको मिल रहे हैं. तो इसके जो फायदे हैं ना, तो ऑयल को कंट्रोल करेगा, एवोकाडो की खूबियां इसमें मौजूद हैं, आपके जितना भी मतलब के फालतू ऑयल होगा ना चेहरे पे उसको रिड्यूस करेगा. और क्या करेगा, ये आपको 100 ml की पैकेजिंग के अंदर मिलता है, बहुत कमाल की पैकेजिंग है जी. और इसके अलावा विटामिन सी फेस वॉश, जैसे कि मैंने कहा, उन तमाम तो लोगों के लिए जिनके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन का मसला है, पिगमेंटेशन का इश्यू है और पिगमेंटेशन नहीं जाती है, खत्म नहीं होती है, तो इसमें ऑरेंज एक्सट्रैक्ट्स मौजूद है, विटामिन सी एक्सट्रैक्ट्स मौजूद है, लेमन एक्सट्रैक्ट्स मौजूद है और नीम एक्सट्रैक्ट्स मौजूद है जो कि विटामिन सी को इसमें बनाते हैं जी. और विटामिन सी जो कि आपके पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए बड़ी इफेक्टिव रहेगी, तो इसको यूज करने से आपकी पिगमेंटेशन कैसे जाती है वो आप देखेंगे. ठीक है, तो दिन में जितनी भी बार फेस को वॉश करेंगे विटामिन सी फेस वॉश से फेस को वॉश करेंगे और फिर अपनी पिगमेंटेशन को खत्म होता हुआ देखेंगे डे बाय डे. अच्छा, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी फेस वॉश है, इनका बड़ा कमाल का और बड़ा क्यूट सा फेस वॉश है. स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के जितने भी प्रोडक्ट हैं सब क्यूट लगते हैं जी. और एंटी एक्नी भी है ये, स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट के साथ ही आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है जी, 3 दिन में विजिबल रिजल्ट देता है. अगर इसके साथ इसकी क्रीम भी यूज करते हैं तो सोने पर सुहागा. और इसके अलावा जी सुपर वाइट की टर्मेरिक ऑयल कंट्रोल, एंटी ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, सुपर वाइट का एंटी ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, टर्मेरिक जो है इसमें मौजूद है, टर्मेरिक एक्सट्रैक्ट और टर्मेरिक की बहुत सारी चीजें. ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए, फेयरनेस को बढ़ाने के लिए. तो क्या कमाल के फेस वॉश इसके रेंज है. और लास्ट में हम बात करेंगे जी सुपर वाइट की राइस कोलेजन फेस वॉश की, सुपर वाइट का राइस कोलेजन फेस वॉश जिसमें कोलेजन मौजूद है, कोजिक एसिड मौजूद है, राइस की इतनी जबरदस्त किस्म की खूबियां मौजूद है जो कि आपकी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन बना देगी कुछ ही दिन में. ठीक है, सर्दियां आ रही हैं, पेट्रोलियम जेली भी आप लोगों ने लेनी है सुपर वाइट वालों की. और सुपर वाइट वाले बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लेवर्स में पेट्रोलियम जेली भी लेकर आते हैं आप लोगों के लिए. और एक बड़ा सा जार उसका बाय कर लें क्योंकि सर्दियों में इसकी भरपूर जरूरत आपको पड़ने वाली है. आप मुझे कॉल कर सकते हैं जी 03000113488 के ऊपर. अच्छा, मैं सोच रही थी कि 2 दिन से हमने टंग ट्विस्टर नहीं खेला, तो हम टंग ट्विस्टर आज तो नहीं खेल, कल से खेलेंगे हम. एंड कॉल्स आप लोगों की लेंगे, मैसेजेस आप लोगों के इंक्लूड करेंगे और कमेंट्स आप लोगों के इंक्लूड करेंगे. شاہمیر لگاری ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم فرام سانگر. سانگر سے شو زبردست ہے, تھینک یو سو مچ. عبد الغفار ران ہمیں سن رہے ہیں مائنر ملسی سے, تھینک یو. حافظ یونس بابر ہمیں سن رہے ہیں, ملک نصر محمد کاکس ہمیں سن رہے ہیں. اگر میں صحیح پڑھ رہی ہوں آپ کی کاسٹ, پہلی دفعہ ریڈ کر رہی ہوں سوری. عبد الرزاق کمبر ہمیں سن رہے ہیں, شریف رشید خوزو ہمیں سن رہے ہیں, مشتاق احمد کمبر ہمیں سن رہے ہیں, غلام حسین ابرو لسنر ہمیں سن رہے ہیں لاڑکانوں سے. اوکے کال لیتے ہیں جی. سیم سیم کالرز آر ناٹ الاؤڈ, اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کال کو کریں گے. اور کالر موجود ہے جی. نیکسٹ ہلو. وعلیکم السلام. کون کدھر سے
1: باجی؟ محمد عالم بات کر رہا ہوں, فرام کندرا سے.
0: محمد عالم کیسے؟ ٹھیک ٹھاک,
1: دعا دعا اللہ کی مہربانی ہے, شکر مالک کا احسان ہے باجی.
0: اوکے پروگرام سن رہے ہیں, پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں؟
1: نہیں نہیں, دوسرا کل کی تھی میں نے.
0: دوسرا چکر کال کی ہے؟
1: ہاں جی جی.
0: اچھا تو مجھے بتائیں کہ کون سا پروگرام ہے یہ
1: باجی؟ یہ پروگرام ہے زندگی گلزار ہے.
0: زندگی گلزار ہے, کس کے تعاون سے ہے
1: وہ؟ سپر وائٹ.
0: سپر وائٹ کے تعاون سے ہے. اوکے تو مجھے بتائیں کہ سپر وائٹ کے پروڈکٹس کو کب لے کر آ رہے ہیں؟
1: جلد انشاءاللہ خرید کریں گے.
0: جلد خرید کر لیں, ایسا نہ ہو کہ سپر وائٹ کے پروڈکٹ سپر سے اوپر چلے جائیں.
1: نہیں نہیں,
0: اور آپ کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں تک. چلیں ٹھیک ہے. اوکے اور کس کہیں گے
1: باجی؟ ایک نغمہ سناؤ.
0: ایک گانا سنائیں, میں آپ کو دو گانے سناؤں گی, بتائیں.
1: چٹھی ذرا صحیح جسے نام لکھی دے.
0: اوکے ضرور سنواتے ہیں, آپ کو ضرور سنواتے ہیں. تھینک یو,
1: بڑی مہربانی. جو سنتے ہیں سارے کو سلام, آپ کو سلام.
0: اوکے جی, تھینک یو سو مچ اللہ حافظ جی. اور نیکسٹ کالر ہم لیں گے 03000 1134888 کے اوپر. ہیلو
2: ہیلو
0: ہیلو السلام علیکم. کون کہاں سے؟
2: عظیمہ قربان علی خاص کے لیے کو بلایا, گوٹا جی غلام خاص کے لیے جھنڈو بھریا.
0: قربان بھائی کون سا پروگرام سن رہے ہیں؟
2: سپر جی کریم جی ٹاؤن کا پروگرام کہاں چلے؟
0: سپر وائٹ بالکل, سپر وائٹ کے ٹاؤن سے پروگرام سن رہے ہیں. پروگرام کون سا ہے؟
2: زندگی گلزار.
0: اوکے جی, ویری گڈ ویری نائس. مجھے بتائیں کہ کون سا پروڈکٹ یوز کریں گے سپر وائٹ کا, کب کریں گے, جلدی سے کر لیں.
2: ہاں بالکل, ایسا سپر وائٹ کے کون ہے وہ انشاء اللہ آن باقی دن میں استعمال کرنا.
0: اوکے جی ٹھیک ہو گیا. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟
2: یہ چون چاہیں گے کاٹھڑی کا غلام رسول مری, عزیز سولنگی, خالق کلاشاری, عزیز جروار, عزیز سولنگی پہ جے بدھن پہ سب نے سلام محبت ہوں. جڑی طرح کا غلام رہی بلوچ چارلی لنڈو سلام.
0: اوکے جی تھینک یو سو مچ. کال ہو چکی ہے جی ڈراپ, اینڈ ہم چلیں گے آگے. ٹھیک ہے آگے چلیں گے, اینڈ ہم نیکسٹ سانگ پلے کریں گے. دا نیکسٹ سانگ از ویری ویری بیوٹیفل. کافی دن بعد یہ سانگ میں پلے کروں گی, اینڈ اس کو ہم سنیں گے, انجوائے کریں گے, آگے چلیں گے. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, اسپانسرڈ بائی سپر وائٹ پروڈکٹس بائی اکسا کاسمیٹکس. گلو ود اس.

जी ये हुसन जो आया है, ये हुसन आया है सुपर वाइट के प्रोडक्ट से, और सुपर वाइट के प्रोडक्ट ऐसे ही आपके हुसन को और मजीद हसीन बनाता रहेगा अगर आप यूज करते हैं सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है। तो सुपर वाइट के फार्मूलाज कैसे बनते हैं जी, वो हम आपको बताएंगे। एंड सुपर वाइट का फार्मूला भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, और सुपर वाइट का फार्मूला कैसे बनता है जी, सुपर वाइट राइस ब्यूटी क्रीम के अंदर आप लोग ऐड कर सकते हैं जी सुपर वाइट राइस एक्ने क्रीम को, एंड उसके साथ सुपर वाइट राइस सेरम को, और तीनों को आपस में मिक्स कर लें। तीनों को आपस में मिक्स करने के बाद ना आप लोग इसको स्टोर कर लें। स्टोर करने के बाद इसको रख लें, रखने के बाद रख के छोड़ नहीं देना। आपको रात को सोने से पहले फेस को वॉश करना है सुपर वाइट का राइस फेस वॉश, उससे फेस को वॉश करेंगे एंड देन फिर क्रीम को अप्लाई करेंगे, और जब अप्लाई करेंगे ना आपको बड़े खूबसूरत रिजल्ट मिलेंगे। इसी बात पर मैं आपको एक और गाना सुनाने जा रही हूँ, गाने को सुनेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी मजीद आप इसे और क्या क्या तैयार कर सकते हैं।

0: It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Abhi Budhopya, GA Hyderabad Matiari, FM 91.6. Sindh Jo Awaaz.
2: O pita ja pitai, pita te vasai noor mujo to.
1: Sindh Jo Awaaz. Budhanda raho.
0: It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream Jo deep clean kare aur de 4 guna brightness Chamak aisi diamond skin jaisi Hame Diamond Glow Bleach Cream
4: Khoobsurti ka asal raaz Sirf Deep Skin Beauty Cream Isme maujood vitamin E beads aur jadeed micro beads formula Aapki jild ko banaye nikhri aur chamakdar Sirf 2 din mein डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
5: अरे नहीं खुश्क और बेरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिनमें आहिन चार रंग की खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चामरन जो खूबी जल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल नीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जय जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: अभी बुधोपिया GA Hyderabad Matiari FM 91.6 Sindh Jo Awaaz
2: O pita ja pitai pita te vasai noor mujo to
1: Sindh Jo Awaaz Budhanda

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

Kishi, welcome back once again. आ गए हम और इसके अलावा जिंदगी गुलजार है sponsored by Super White Products by Aksa Cosmetics जो कि आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इतने खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट्स, इतने ज्यादा खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट्स के पहले कभी इतनी ज्यादा खूबसूरती आपने कभी या इंजॉय नहीं की होगी अपनी लाइफ में. खूबसूरती भी एक ऐसी चीज है जो कि इंजॉय की जाती है. या खूबसूरती का ताल्लुक मैं हमेशा कहती हूँ कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से भी होता है. और कोई कितना ही आपको क्यों या खूबसूरती मैटर नहीं करती, दिल अच्छा होना चाहिए. अगर कोई ये बंदा बोलता है ना बात, वो झूठ बोलता है, ठीक है. तो उस पर आपने यकीन नहीं करना. खूबसूरती खूबसूरती होती है, ठीक है. तो खूबसूरती को मजीद और खूबसूरत कैसे बनाएंगे, सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को यूज करके. और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स, सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम, सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी क्रीम, फेस वॉशेस की इतनी ज्यादा जबरदस्त रेंज जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया. अच्छा, इनके सोप्स भी आते हैं बाय द वे. सुपर वाइट का राइस कोलेजन सोप जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है. आप इससे फेस को वॉश करने के साथ साथ आप इससे हैंड्स एंड फीट्स को भी वॉश कर सकते हैं, ठीक है. और आप इसके साथ फ्रेश भी हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो सर से लेके पांव तक खूबसूरती आपका मुकद्दर बन जाएगी अगर आप इसको यूज करते हैं, ठीक है. ऑन द वेरी सीरियस नोट, इसके अलावा जो इनका बूस्टर आता है सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर, इसको आप सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं. आप इसको सुपर वाइट राइस ब्यूटी क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं. आप इसको सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्ने क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा सुपर वाइट टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं. इसको सुपर वाइट स्ट्रॉबेरी कोरियन फार्मूला ब्यूटी क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं. मकसद ये कहने का कि आप सुपर वाइट का कोई भी मतलब इसकी कोई भी ब्यूटी क्रीम आप यूज कर रहे हो, आप इसका कोई भी बूस्टर उसकी क्रीम में मिक्स करके ऐड कर सकते हैं. आपको जिस तरह रिजल्ट चाहिए, लाइक अगर आपको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए तो आप फिर या तो स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम यूज करेंगे सुपर वाइट वालों की, या फिर सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी सोप नहीं सॉरी ब्यूटी क्रीम यूज करेंगे और उसमें फिर बूस्टर को ऐड कर लेंगे, ठीक है. तो फिर ये है कि कोरियन ग्लास स्किन आपको मिल जाए. इस तरीके से आप इस बूस्टर को यूज कर सकते हैं अपनी क्रीम्स में ऐड करने के बाद. अगर आप ऑयल फ्री स्किन चाहते हैं, सुपर वाइट ऑयल फ्री स्किन के अंदर मिक्स कर सकते हैं इसको, सुपर वाइट ब्यूटी सीरम.

को या फिर सुपर वाइट राइस ब्यूटी सीरम को। तो इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं और इतने जबरदस्त प्रोडक्ट जब आपको मिलेंगे, जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, आप कहेंगे वाकई जो मैं कुछ बता रही हूँ उससे कई ज्यादा हकीकत में इसके रिजल्ट्स हैं, बहुत खूबसूरत। कॉल कर सकते हैं आप लोग, मुझे कॉल कीजिए 03000113488।

ब्यूटीफुल सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ हम चलते हैं जी आगे 03000113488 के ऊपर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के साथ साथ वो तमाम तो लोग जो कि डेली बेसिस पर कॉल कर रहे हैं वो कॉल नहीं करेंगे, जिन लोगों ने कभी कभार कॉल मिलाई हो वो कॉल कर लेंगे, ठीक है, तो ये करेंगे आप सब. एंड गाना हम नेक्स्ट प्ले करने जा रहे हैं तो नेक्स्ट गाना भी हमने प्ले कर दिया है, बाय अब्रारुल हक. साथ साथ कमेंट्स को एंटरटेन करते हैं जी. अच्छा, हमें कमेंट किया है फरवा गुल ने. फरवा गुल लिखती है कि शो बड़ा जबरदस्त सुपर डुपर है, ब्यूटीफुल है. सुपर डुपर क्यों नहीं होगा, सुपर वाइट के तामून से है तो सुपर वाइट के तामून से होने वाला शो सुपर डुपर होगा. अच्छा, फरवा गुल कहती हैं गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे. आप ही आपको न्यू शो में आपको मुबारक.

0: जो डर गया समझो मर गया, इनका सामना करो, तुम आगे बढ़ती रहो और इन्हें
1: कॉलर में चल नेक्स्ट लाइन होंगे। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? अयाज अली भुट्टो भाई, कैसे ठीक ठाक हैं? प्रोग्राम सुन रहे हैं, कौन सा है?
2: सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम।
1: सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम कब यूज कर रहे हैं? ओके, जरूर करें, बस सुपर वाइट होना चाहिए। अच्छा और कुछ कहेंगे?
2: राशिद भुट्टो,
1: राशिद भुट्टो,
2: भुट्टो।
1: अच्छा सलाम दे रहे, ओके ओके
2: भुट्टो,
1: ओके खत्म हो गए।
2: भुट्टो
1: ओके, ओके जी, ये एक एक मिनट का गैप लेके ना दोस्तों को शामिल करने से बेहतर है जल्दी जल्दी बोला गया। वैसे ये सलाम दुआ देने का जो ये ट्रेंड है ना, ये काफी पुराना हो चुका है, तो कोशिश किया करें कि कुछ प्रोडक्टिव बात किया करें, ठीक है? बहुत कम लोगों को कॉल पे आने का मौका मिलता है, तो इस मीडियम पे आके इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया करें, कोई अच्छी प्रोडक्टिव बात किया करें, ठीक है? जो कभी किसी ने ना की हो। और इसके अलावा जी आगे चलते हैं, कमेंट्स और मैसेजेस मुझे रिसीव होते जा रहे हैं, और कमेंट्स और मैसेजेस, और साथ में हम फिर से गाना चेंज करने का सोचेंगे नहीं बल्कि करेंगे, एंड हम गाना प्ले करेंगे। मेरे ख्याल से लास्ट में हम एक ही गाना प्ले कर सकते हैं, और मेरे जाने का वक्त भी जो है ना करीब आ रहा है।

सावधी सावधी। आगे जी इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत और सुपर व्हाइट के तमाम प्रोडक्ट्स, चाहे फिर वो सुपर व्हाइट की विटामिन सी क्रीम हो, सुपर व्हाइट की स्ट्रॉबेरी कोरियन फॉर्मूला ब्यूटी क्रीम हो, या फिर सुपर व्हाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम हो, या फिर सुपर व्हाइट की कोजिक एसिड राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम हो, सुपर व्हाइट की ऑयल फ्री एक्ने क्रीम, और इसके साथ साथ इनके बहुत सारे फेस वॉशेस की अच्छी रेंज और सुपर व्हाइट ऑयल फ्री क्रीम उन तमाम लोगों के लिए जिनकी स्किन टाइप ऑयली है, और सुपर व्हाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम भी आती है जी इनकी। इनके सीरम्स भी आते हैं, सुपर व्हाइट राइस सीरम और सुपर व्हाइट ब्यूटी बूस्टर, तो ये आप किसी भी क्रीम में इनकी एड करके यूज कर सकते हैं। साथ में इनके फेस वॉशेस की बड़ी अच्छी रेंज है, अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप इसको जो है बाय कर सकते हैं। फेस वॉशेस की रेंज में से कोई भी एक अच्छा सा फेस वॉश एंड देन उसको अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करके खूबसूरती को अपना मुकद्दर बनाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। और इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हो जाता है जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद सेम आरजे। सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है। लव सिंपल बट थिंक हाई। सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइंस आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज़।

0: It's 1 PM. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics.
5: शामिल आहिनि बिलावल घांगरो ऐं वाटेड़ो अब्दुला बिरोही बि गोलियुनि जो खाज बणिजी विया आहिनि. पुलिस जो चवणु आहे त घांगरा बिरादरी जो मुख़्तलिफ़ बिरादरीनि सां तकरार हलंदड़ आहे. घांगरा बिरादरी जे मारिजी वियल चइनि ॼणनि जो तालुक़ु रतोदेरो भरसां ॻोठ वदापुर सां आहे. मक़तूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि. वधीक जांच जारी आहे. सिक्योरिटी फोर्सिस जूं केपीके ऐं बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं. 11 दहशतगर्द मारिजी विया. सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ॾखण वज़ीरिस्तान में ख़ारिजी दहशतगर्द जे ताकन खे निशानो बणायो वियो, जंहिं दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया. बलोचिस्तान जे माशकेल में पुलिस चौकीअ ते हमले बाद

0: हुकूमत ऐं अपोज़िशन में ॻाल्हियुनि जो बि॒यो दौर अॼु शुरू थींदो। ज़रियनि मूजिबि अपोज़िशन पंहिंजा मुतालबा हुकूमत खे पेश करे छडि॒या आहिनि। पीटीआई बानी जे इस्पताल मुंतक़िले जे अदालती फ़ैसिले ते अमल करण जो मुतालबो। हुकूमत अपोज़िशन खां लॉन्ग मार्च मुल्तवी या
1: शादी के बाद पहली बार ससुराल आयो, गिल्ट लिए बगैर कैसे जा सकते हो?
0: ईरान सऊदी अरब ते हमला कंदड़ जिमनी हुसैन खां लातालकी ज़ाहिर करे छॾी। ईरानी परडे॒ही वज़ीर हुसैन ते हमला करण बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾेई छॾी। परडे॒ही मीडिया मूजिब ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राख्ती हुसैन जे विच ओभर में अरब मुल्कनि ते हमलनि खां लातालकी ज़ाहिर कंदे हमलनि बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ डि॒नी आहे। खैरपुर में डिस्ट्रिक्ट बार पारां सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ रैली। वकीलनि सिंध ख़िलाफ़ साज़िशनि खे रद्द कंदे साज़िशूं रद्द करण जो मुतालबो करे छडि॒यो आहे। अॻवाननि चयो आहे त सिंध जे वहदत ते कंहिं बि क़िस्म जो समझौतो न कयो वेंदो। सिंध खे इंतज़ामी बुनियादनि ते विरहाइण वारनि मनसूबनि खे रद्द कयूं था।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
4: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
3: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवा के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह केतराई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां ख़मीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: खुशखबरी खुशखबरी अहां जे पांजे शहर मोरो में हैदराबाद होम्योपैथिक क्लिनिक दादू रोड मोरो जिते फैमिली फिजिशियन होम्योपैथिक डॉक्टर शाह बेग खोसो माहिर अमराज एलर्जी नजलो जुकाम दम सहको खंग टीबी मलेरिया मुद्दे जो बुखार
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: GA FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

ஜி பத்திரி பவாசி. छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज करा

ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਿਨ ਸੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਿਨ ਸੇ ਤੱਕ ਕਮੀ ਸੇ ਆਸਮਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸੇ ਤੌਰ ਤੱਕ ਹਮ ਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਦਿਲ ਸੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਐਫ ਐਮ 88 ਨੈਟਵਰਕ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਖਰ ਮੋਰੋ ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ ਮਟਿਆਰੀ ਸਕਰਨ ਨਹਿਰਾਪੁਰ ਮਾਤਲੀ ਨੂਰੀਆਬਾਦ ਔਰ ਜਨਾਬ ਲਾੜਕਾਨਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ ਸੇ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਵਾਈਟਿਸ਼ ਐਂਡ ਡੀ ਸਕਿਨ ਬਿਊਟੀ ਸ਼ੋ स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें होने वाली है और जनाब बातें करेंगे आप लोगों के साथ आप लोगों की खूबसूरती के हिसाब से बातें करेंगे आप लोगों के साथ आप लोगों के हुसन के हिसाब से बातें होंगी आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा वाली जो कि आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में अंदर हो और बिल्कुल जी स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें होने वाली है और जनाब बातें करेंगे आप लोगों के साथ आप लोगों की खूबसूरती के हिसाब से बातें करेंगे आप लोगों के साथ आप लोगों के हुसन के हिसाब से बातें होंगी आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा वाली जो कि आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में अंदर हो और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं तो तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और इसी के साथ साथ अपना भी तारीफ करवाते हैं लिसनर्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग fantastic interesting and entertaining character your rj any dj sidra muskan naam to sunai hoga to bilkul aapki sidra ke sath maujood hai janab is beautiful se program mein aap logo ko beautiful banayenge aur wo kaise beautiful banayenge kyunki aap logo ko d skin beauty products ke bare mein bataya jayega to d skin beauty products mein aap logo ke liye d skin beauty cream hai and d skin face wash hai ye dono products market mein in hai agar aap purchase karna chahe to bilkul kar sakte hain वैसे भी कहते हैं ना खूबसूरती के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं बनता अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे चेहरे पर निखार होना चाहिए खूबसूरती हमें वो वाली मिले जो कि हम हमेशा से हासिल करना चाहते हैं तो जब आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है जो आपकी खूबसूरती में इजाफा लाने वाला है आपके चेहरे को चमकाने वाला है और आप लोगों की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है तो भाई कौन सी बातें जो आपको रोक रही है कौन सी चीजें जो आपको डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज करने से रोकी जा रही है आप जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज करते जाइए और इसके अलावा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाते हैं और वहां से आपको ये मालूम पड़ता है कि भाई हमारे एरिया में तो अवेलेबल नहीं है अभी तक डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो उसके लिए आप लोगों को बताया जाएगा कि आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कैसे करा सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वाली बातें हैं इस प्रोग्राम में आप लोगों के फायदे के मुताबिक यानी कि आप लोगों को बताया जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के क्या क्या फायदे हैं और उसके साथ साथ

खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: ओके जी, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी नाच हुई आपने यहाँ पर सुनी, और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चे होते हैं जनाब, थोड़े से तो आगे खर्चे कराए ना, ऐसे कैसे चलेगा। अगर आप भी थोड़े से खर्चे करना चाहते हैं और खर्चे भी वो वाली बाबा चाहना है ना, वो खर्चे करो जेको सजायो वे छो तो कई मरतबा ये अस खोड़ सा अड़ा खर्च कर अजाया थी वेंदा है। जदी ब्यूटी प्रोडक्ट की गाल इंदी है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में खोड़ सारा प्रोडक्ट अड़ा अस इस्तेमाल कर स्टार्ट कर भाई नालो तो वो हों पर दर्शन छोटा हों बुध अव न। सो बिल्कुल वैसे ही अगर तुम भी कोई अड़ो प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो तुम्हें रिजल्ट सफा जीरो मिली रो है, उल्टो तुम्हारे चेहरे की स्किन खराब थी वही है, तो तुम्हें करो है तुम्हें डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करो है। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में तुम्हें बिल्कुल भरपूर पूरे प्रोग्राम में बुधायो वेंदो। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तुम किथा परचेज कर सो या वे पानी करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सो यो भी बिल्कुल तुम बुधायो वेंदो। पर अज के प्रोग्राम जो टॉपिक इो सब का पहले तक बुधायूं। ओके जी, तो आज के प्रोग्राम में जो सवाल होने वाला है वो जरा गौर से सुनिएगा, ऐसा ना हो फिर बोलेंगे भाई हमने तो सुना ही नहीं, समझ ही नहीं आया सवाल। सवाल जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, और इस तरह के आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई वजन नहीं मगर उसको 20 लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते। हाँ जी, ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई वजन नहीं लेकिन फिर भी उसको 20 लोग मिलकर भी नहीं उठा पाते। हाँ जी, ये क्या हो सकता है आप मुझे बताइए। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनने वाले हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है। अगर आप हमारे पेज पर आते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। बिल्कुल ही, तो मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है, जहां जहां तक हमारी आवाज धक्के खा रही है, सब लोग मुझे बताएं कि कहां कहां से आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हो, जरा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और मुझे बताइए कि वो क्या चीज है जिसका कोई वजन नहीं लेकिन 20 लोग मिलकर भी उसे नहीं उठा पाते। हां जी भाई साहब, और जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। अगर आप भी चाहते कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराने के लिए आपको जो नंबर बताऊंगी ना उनके ऊपर आपने बस रब्ता करना होता है। नंबर्स के ऊपर राता कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल हो जाए, या फिर ऐसा वाला सीन है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो मिलती है लेकिन डी स्किन का फेस वॉश नहीं मिल रहा, तो वो भी आप अवेलेबल करा सकते हैं। बस नंबर्स के ऊपर राता कीजिए, और नंबर होने वाले हैं जनाब 0332738403 09 नंबर आए 03 12 50 9070 50 970। ये नंबर सांझे के तुम डायल करे पांचे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सको था। सो अवेलेबल करायो बाबा तारिक भाई भी असि पोस्ट से वेठो अव, तारिक भाई तवाज लाए जो है अवेलेबल कराए छी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश, बस तारिक भाई के फोन तो हणो। तारिक भाई चंदो असा ताबेदार। डी स्किन ब्यूटी क्रीम हाजिर बाबा, अवेलेबल कराए छू था, तो न तुम जे एरिया में ना ही अवेलेबल थी तो बाबा बुधायो नी, बुधाईंदा ना तो खबर क्यों पड़ी तो तुम्हारे एरिया में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अना को मिले थी, मिले रही तो जाहिर सी गल इस्तेमाल भी न करना हूं। सो इस्तेमाल कर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की पानी करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइंदा रहो। अच्छा किंजा यहां पर हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, वालेकुम असलम, गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूं, आप बताएं कैसी। आप अपनी अम्मी के साथ मिलकर हमारा प्रोग्राम सुनती है, बहुत शुक्रिया। अबू हनीफ अल बलोची हमें सुन रही है, गुड आफ्टरनून सिद्रा मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। अच्छा अली रना भाई कश्मीर से हमारे साथ मौजूद है, भाई को वेलकम हो गया। फरवा गुल कहती है असलम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, ब्लेस यू विद बेस्ट विशेज, टेक केयर। आप ही अभी आपकी तबीयत कैसी? मेरी तबीयत ठीक है जी, आप बताएं आप कैसी हैं। कहती हैं कि आप ही अर्ज किया है, रेजा रेजा ही ख्वाब मेरी आंखों में, कैसे कह दूं कि गम नहीं होता, कोई शिकवा नहीं मगर मोला, क्या करूं दर्द कम नहीं होता। अल्लाह साईं तांजो दर्द घट करे छड़ी दो बाबा, अल्लाह खां दुआ घुरो। और फकीर शाह शेख हमारे साथ मौजूद है जी, लाड़काना से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जैन अली लिखते हैं कि खूबसूरत है चांद भी मगर वो जमीन जादी अलग ही मयार रखती है, फॉर यू सिडो, थैंक यू वेरी मच जैन। और लिखते हैं कि कोई मिले तो यूं मिले कि वो मिले तो सुकून मिले, आए हाय। और आपका डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा यहाँ पर हमारे साथ फरवा दीदी, यहाँ पे गाना बिल्कुल आपके लिए लगाते हैं, और महर इरफान सियाल साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। गुड आफ्टरनून मैम आरजे, नाइस होस्टिंग मैम आरजे, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपको, वेलकम हो गया। नजीर कोसू भाई हमें सुन रहे हैं, वेलकम जी आपका भी। और किंजा ने क्या लिखा है, गाने की फरमाइश करती हूँ, गाना आपका लगाते हैं किंजा। नजीर कोसू भाई हमें सुन रहे हैं, बलूचिस्तान से आपने मुझे ज्वाइन किया, लेकिन कि कभी कभी सुकून चीजें हासिल करने में नहीं, उनसे दिल हटा लेने में होता है। जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसे अमानत समझो, मिल्कियत नहीं। दिल जब मेरा से निकल कर अल्लाह का आ जाए, अल्लाह पर आ जाए, तब दस्त बर्दारी भी सुकून बन जाती है। ओके जी ओके। अलीशा क्वीन हमारे साथ ही, अलीशा लिखती हैं कि उसकी आंखें बला की ताजर हैं, जिसको देखें खरीद लेती हैं। हाँ बाबा हाँ, तान सही था जो अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि हेलो हाय, खाना खाकर जाना, आज भला बिरयानी जो आसरो आए लगे तो चलो ठीक है, तान जी आसरे में हूँ। तारिक भाई हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, वालेकुम असलाम तारिक भाई जान। और चाचा खालिद हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, वालेकुम असलाम चाचा, मैं ठीक है। तां कहते हैं खर्च, हाँ खर्च कयो बाबा, सजायो खर्च कयो, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम उहा प्रोडक्ट आहे जेका तव्हां जा सभु थक लाहे छॾींदी, तव्हां जी खूबसूरती खे एॾो बहितर तरीक़े सां निखारींदी, तव्हां पाण चवंदा बाबा असां पहिरियां सिदरा जी ॻाल्हि छो न मञूं पिया। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां जे लाइ जेको आहे न तमामु मुनासिब क़ीमतनि में मिली रही आहे, त एॾो ख़र्च कोन तव्हांजो थींदो दिलि ज़ाय कयो, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो। हिते टाइम थियो आहे बाबा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾींदसि, तव्हां गाॾी न वञो, हिते वेठा हुजो। ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटा थी, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग, ॿुधंदा रहो ऐं टॉपिक खे फॉलो कयो, मोटी अचां थी, हिते वेठा हुजो।
1: It's 1:30 PM. This time check. It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal, jeka de kudrati nikhar, saaf, naram ai roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अरे न, खुश्क ऐं बीरोनक स्किन, हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट। पर इहो कीअं, तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिंमें आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन, जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे, सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
5: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

और क्या चाहिए आप लोगों को नाशुक्रो इतना अच्छा इतना कमाल का प्रोडक्ट आपको बताया जा रहा है। और खूबसूरती तो हर किसी की ख्वाहिश होती है ना, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ अपनी जिल्द का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऐसा मैं आप लोगों को इसलिए कहती हूँ क्योंकि भाई बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो सिर्फ क्रीमें लगा रहे होते हैं। क्रीमें लगाना इनफ नहीं होता, आप लोगों को चाहिए कि आप जो है ना अच्छा सा फेस वॉश भी लगाएं अपने चेहरे के ऊपर। अगर आपके पास डी स्किन का फेस वॉश मौजूद है तब तो भाई क्या ही बात बन जाएगी, क्योंकि डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है। अगर आप परचेज करने जाते हैं तो आपको आराम से मिल जाता है। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ये आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने कामों की वजह से प्रॉपर अपना और अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो अगर आप अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, आप काम में इतने मसरूफ हैं, तो बस आप डी स्किन का फेस वॉश अप्लाई कर लीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम अप्लाई कर लीजिए। ये दोनों चीजें इनफ है भाई आपकी ब्यूटी केयर में इजाफा लाने के लिए, आपकी खूबसूरती को। और जब आप इन दोनों प्रोडक्ट्स का यूज करते रहेंगे ना तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कितना अच्छा और कितना जबरदस्त प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी बात है जनाब कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना और डी स्किन फेस वॉश, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। तो इतने जबरदस्त इतने कमाल के प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद है तो मैं तो चाहूंगी कि भाई जल्दी से जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से और परचेज कराइए, और इसी के साथ साथ खूबसूरत होते जाइए, क्योंकि खूबसूरती के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। और इस्तेमाल करते रहिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। ओके जनाब, तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लोग हमारे खूबसूरत से प्रोग्राम का हिस्सा हैं। पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए। आज भला मुझे आप लोगों की रश कम क्यों नजर आ रही है, जल्दी जल्दी से प्रोग्राम पर जो है ना वो हल्ला बोलिए और जरा। हाँ जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। जब आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते हैं ना तो ये फायदा हो जाता है कि भाई हमारी पोस्ट बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है और बहुत ज्यादा लोगों को हम इजीली बता पाते हैं कि वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फायदा उठाइए और हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाइए। उनके अलावा हमारे पास भी आप लोगों के मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर चाचा खालिद कहते हैं, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाना डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही सही। ये क्या था चाचा, चलिए आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया के साथ। और हमारे साथ फहीम भाई मौजूद है, कहते हैं तू आर थी अचे थी अई पार थी बने थी, तू आर थी अचे थी अई पार थी बने थी, तू वहां ते किरे थी अई बार थी बने थी। फहीम शेख लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम याली मदद, अदा केड़ा हाल आहिन सफा बल्ली, टॉपिक जो जवाब दिनो आहे ओके। अच्छा, अलीशा लिखती है कि जिंदगी ये है कि तुम सामने रहो ताकि मैं जो ताकि मैं जी सकूं। अच्छा, सही सही सही सही सही, हाँ भाई पसंदीदा इंसान की बात ही कुछ और होती है। और चाचा कहते हैं कि क्यों धिक्के खा रही है आपकी आवाज, आपकी आवाज ही तो है जो सहर तारी करती है बेटा सिड्डू, अल्लाह जाए वदा मना दिल जाएगा या ना। और किशोर भाई आपने टॉपिक का जवाब दे दिया, क्या बात है जी, बढ़िया हो गया। और उनके अलावा फहीम भाई कहते हैं कि अदा आज लगे तो अमां के जुकाम आए, हाँ थोड़ा थोड़ा मुखे भी महसूस थे तो ये आवाज थोड़ी अजीब आए मुझे, पर कोई बात नहीं है जी, आप गुजारा कर लीजिएगा। और ये फर्ज मोहम्मद फर्ज राहिब अली खोसू भाई हमारे साथ है। फर्ज राहिब अली खोसू भाई वालेकुम अस्सलाम, आपको भी वेलकम कहते हैं। और किशोर भाई कहते हैं अदा एकड़ो सॉन्ग आए पितकड़ो गानो, बिल्कुल तांजी फरमाइश ते हलायो वेंदो आई तवां पांजी सीट ते बैठा हो जो। परवा कहते हैं कि आप डीपी देख कर भी नहीं समझे कोई, अच्छा ओके जी ओके। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी दोनों आंखें खोलकर बैठना पड़ेगा दोनों आगे खोलकर बैठते हैं। अबू हनीफल बलूची हमें सुन रहे हैं कि कहते हैं कि लोगों ने मांगा रोज खुदा से कुछ नया, एक हम तुझे एक हम थे कि तेरे ख्याल से आगे ना जा सके, आंसर है आपने दिया है जवाब जी ओके हो गया। और फरवा आपने भी टॉपिक का जवाब दे दिया, ये भी ठीक है जी। इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं, बोले सोनो खान लाशारी मीरपुर खास से, कहते भाजी सिदरा टॉपिक पानी, ओके ओके ओके आगे नहीं पढ़ेंगे वरना लोग जान जाएंगे कि आज के सवाल का जवाब क्या है। और आज जो मैंने आप लोगों से सवाल
पूछा है, तो सवाल ये पूछा है कि आप मुझे बताएंगे वो क्या चीज है जिसका कोई वजन तो नहीं लेकिन फिर भी उसे 20 लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते। हाँ जी बिल्कुल, आप मुझे ये जरा इस सवाल का जवाब बताइए। मैं आप लोगों को एक गाना सुनाती हूँ, बड़ा ही अच्छा जबरदस्त सा गाना है। गाना सुनते और गाना सुनते सुनते आप लोगों के साथ बातें करते रहेंगे और आप लोगों को बताएंगे जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जो कि आप इस्तेमाल कर रहे नहीं बताइए ना मुझे, और आगे करीबी जनरल स्टोर्स पर मिल रहे ही नहीं ये भी बताइए ना मुझे।

हाँ जी, इतना भी रूठना सही नहीं होता. वैसे ये चीज मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि औरत जो होती ना, वो मतलब ऐसा होता है कि बार बार रूठ जाती है, और इस वजह से रूठ जाती है कि अगला इंसान मुझे मनाएगा. लेकिन जब वो रूठती है ना, तो वो अपनी अहमियत खो देती है. क्योंकि इस तरह की जो औरतें होती ना, वो जो बात बात पर रूठ जाती है और ज्यादा रूठ जाती है, वो अपनी अहमियत ही खो देती है. क्योंकि अक्सर देखा जाए तो भाई, ऐसा इंसान किसी को भी पसंद नहीं आता जो बात बात पर रूठ जाए. तो ज्यादा रूठना, चाहे औरत हो या मर्द हो, किसी पर भी सूट नहीं करता. तो मत रूठा करी. और खास करके भाई अपने पसंदीदा इंसान से. हाय, ओके जी, इसी बात पर एक और बात भी याद आ गई कि भाई मुझे ये लगता है कि इंसान के किरदार की बस सिर्फ दो ही मंजिलें होती हैं. या तो वो दिल में उतर जाता है, या तो वो दिल से उतर जाता है. मुझे और चीजों के बारे में पता ही नहीं. या तो एक इंसान दिल में उतर सकता है, या तो फिर दिल से उतर सकता है. आप बताएं, आपको क्या लगता है? भले रुस्से भले रुस्से. रुसण वाला मानू वैसे भी थोड़ा घट वर्णदा है. वासु भाई कहते हैं कि मुझे प्यारी अदी सलाम वालेकुम अस्सलाम व लैली सलाम मदद केड़ा हाल है सबा खुश आवे सब मजे में ता पांजा हाल हवाल दियो. और तारिक भाई लिखते हैं कि सज्जाद अली रुस्तमानी मातली से अच्छी कस्टमर ही हमारे डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कर रहे हैं. क्या बात है भाई. सज्जाद अली रुस्तमानी भाई मातली से हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपको. वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं जनाब. ऐसे ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहिए, और यकीनन आपको अंदाजा हो चुका होगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो इस्तेमाल है वो क्या ही कमाल का है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले लोग जो है ना, वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास अब ऐसा प्रोडक्ट आ चुका है जिसके इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपके चेहरे पर जितने मसाले हैं वो सारे दूर हो जाते हैं. आपको मिलती है खूबसूरती, आप हो जाते हैं हसीन, और लोग आपसे पूछते हैं बताएं तो ये क्या कमाल है कि आप इतनी खूबसूरत होते जा रहे हैं. दिन ब दिन आप जवान दिखते जा रहे हैं. आपके चेहरे के रिंकल्स, फ्रेकल्स, क्रिंकल्स, ये सब चीजें खत्म होती जा रही है. तो आप उन्हें बताइए कि जनाब ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का. अगर आप नहीं बता रहे तो उन्हें हमारे प्रोग्राम का एड्रेस बता दीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लगाए रहे हैं या फिर नहीं, मुझे बताइए. और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, वो भी अब अवेलेबल हो चुका है. तो अगर आपके एरिया में रहता है तो जल्दी से अवेलेबल कराइए. नंबर्स के ऊपर रब्ता करते रहिए और परचेज करते जाइए. पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए. और यहाँ पर हमारे साथ हैं जी अली रजा लगारी भाई, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? शो तमाम नारी से है. सॉन्ग कल शाम धारे मां दिसां थी तमाजा गाना मुखे मिली वया या लिस्ट में बची वही जगह तमाजे लाए बिल्कुल हलाए वठना से. आई क्या कहते हैं कि डेडिकेट टू अजहर लगारी, आकिब लगारी, आसिम लगारी, अनवर लगारी, अब्बास लगारी, मजहर लगारी, आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श खोखर, अल्लाह बचायो मकसूद अली लगारी. ओके जी, सब भाइयों को वेलकम हो गया. और मोहम्मद जमान भाई कहते हैं गुड आफ्टरनून बुआ जी, हम भी आए हुए हैं इस प्यारी सी महफिल में आपकी स्वीट सी वॉइस से लुत्फ अंदोज होने के लिए. अच्छा, मेरे को लगा पता नहीं क्या लिखा है. तो वेलकम कहते हैं प्यारे भाई को. वासु भाई कहते हैं दी असिडो प्रोग्राम से बता सलदा पाई, थैंक यू प्यारा भा. परवा कहती है कि आप ही, हाँ हाँ मुझे पता चल गया.

क्या बात है जी, जरा आ राहों में मेरी, उसको बताना चाहता होगा कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप भी लगा लीजिए। और चाचा कहते हैं कि हाइलोरोनिक क्या है, हाइलोरोनिक एसिड सीरम है, एक सीरम होता है, और जैसे सीरम आपकी स्किन के लिए जरूरी होते हैं ना, जैसे विटामिंस के सीरम होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक हाइलोरोनिक एसिड सीरम है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इफेक्टिव है, तो वो आपके लिए हमने डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश के अंदर एड कर लिया है। आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और है भी सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द हजरात खवातीन, तो आप ट्राई करके देखिएगा। और फरवा आपकी पसंद का गाना लगाते हैं जी, आप हमारे साथ जरा बनी रहिए। और मोहम्मद जमान भाई कहते हैं अच्छा हुआ रश कम है, आज हम गरीबों की पसंद भी चलेगी, गाना तो बताएं कौन सा सुनना चाहते हैं। वासु भाई कहते हैं अदी से दो सुभाणी मुझे कबूतरन जी कबूतर आइन भाई भाई शो कर जी भूना एंजॉय कर पांजी जिंदगी के। और फलक अली हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, लिखा है खामोश लबों पर भी मोहब्बत का असर है, आंखों में छुपा एक हसीन ख्वाबे सहर है, न चांद की ख्वाहिश न सितारों की तमन्ना, बस एक तेरा साथ हो और कुछ भी न मांगो। कुछ लोग दिल में इस तरह उतर जाते हैं कि बिछड़ भी जाएं तो उम्र भर याद आते हैं, हमने तो मुस्कुराकर हर दर्द छुपा लिया, लोग समझते रहे कि हमें कुछ हुआ ही नहीं, तेरी यादों की खुशबू से महकता है दिल, तो दूर है मगर फिर भी धड़कता है दिल, कभी फुर्सत मिले तो हमें भी याद कर लेना, हम आज भी तुम्हारे इंतजार में हैं। ओके जी, ये तो बढ़िया हो गया। और मुझे बताएं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया नहीं। अलीशा कहती है कि अच्छा अलीशा आपने गाना लिखा है, कहती डेडिकेट माय ब्रदर सदाम हुसैन चांदियो। ओके अलीशा। मधोश भाई लिखते हैं कि अदी ही गानो हलायो खिली, अदा मां ऐसो गानो तो हलाए बैठू था। किशोर भाई कहते हैं कि अदा हाण चवण इो तव्हांजो कॉमेंट मूंखे समझ में न आयो, अदा एक्सप्लेन अस प्लीज। अच्छा फहीम भाई कहते अदा असांजो गानो प्ले, तव्हांजो गानो थर्सडे जे प्रोग्राम जी लास्ट लिंक में हलायोसीं, तव्हां ॿुधी वठिजो ठीकु आहे। और गुल यासी नाज़ में सुन रहे हैं, आप को प्रोग्राम में ख़ुश आमदीद कहते हैं। दिल इतना भी पागल नहीं होता जितना आप लोगों ने बनाया हुआ है, समझा हुआ है दिल को। दिल तो बेचारा ऐसे सोचता होगा कि मेरा काम तो सिर्फ खून पहुंचाना है, लेकिन ये लोग मुझसे कैसे कैसे काम करवा रहे हैं।

अगर दिल अपना असली काम छोड़कर आपके बताए हुए कामों पर चले तो सोच लीजिए कितनी फसाद हो जाए। तो बेचारे दिल का जो काम है उसे बस अपना काम करने दिया करे, उसे रिलैक्स रखा करे, सुकून में रखे, ताकि आपकी बॉडी पर खून जो है ना वो सही तरीके से पहुंचता रहे। और बेचारे दिल को ज्यादा तंग मत किया करे। और यहाँ पर टाइम हुआ है जी जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, जल्दी से वापसी आप लोगों के पास, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाई स्टेशन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: Brought to you by
5: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream.
6: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
7: हुकूमत ऐं अपोज़िशन में ॻाल्हियुनि जो ॿियों दौर अॼु थींदो. ज़रियनि मूजिबि अपोज़िशन पंहिंजा मुतालबा हुकूमत खे पेश करे छॾिया आहिनि. पीटीआई बानी जे इस्पताल मुंतकिलीअ जे अदालती फ़ैसिले ते अमल करण जो मुतालबो. हुकूमत अपोज़िशन खां लॉन्ग मार्च मुलतवी या ख़त्म करण जो मुतालबो कयो. अदालती फ़ैसिले ते अमल दरामद जी ख़ातिरी बि कराई. ईरान सऊदी अरब ते हमला कंदड़ यमनी हुसैन खां लाताल्की ज़ाहिर करे छॾी. ईरानी परडे॒ही वज़ीर हुसैन ते हमला करण बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾेई छॾी. परडे॒ही मीडिया मूजिबि ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराग़ची हुसैन जे विच ओभर में अरब मुल्कनि ते हमलनि खां लाताल्की ज़ाहिर कंदे हमलनि बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ डि॒नी आहे.
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: Brought to you by
5: Super White Oil Free Beauty Cream. मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए. Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में.
6: अ प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.
8: अहां जो गाड़ी खरीद करण जो इरादो आहे
2: या पंहिंजी पुराणी गाॾी विकिणण चाहियो था, त पोइ अचो बालाज मोटर्स मोरो ते,
8: जिते तव्हांखे मिलनि थियूं टोयोटा, सुज़ुकी, होंडा,
2: किया, स्पोर्टेज ऐं ॿियनि कंपनियुनि जूं मुख़्तलिफ़ गाॾियूं, जिन में जापानी इम्पोर्टेड ऐं हाइब्रिड गाॾियूं पिण शामिल आहिनि.
8: तव्हांजी पसंदि, ज़रूरत ऐं बजट मुताबिक़ गाॾी जी चूंड में बहितरीन सहकार.
2: बालाज मोटर्स मोरो ते हर क़िस्म जे गाॾियुनि जी ख़रीद ऐं विकिरो जी सहूलियत मौजूदु आहे, मुनासिब अघनि ऐं बहितरीन डील सां.
8: इन खां अलावा पूरे पाकिस्तान में अव्हां जिते बि हुजो पंहिंजी गाॾी बुक कराए सघो था.
2: बालाज मोटर्स नज़्द गार्डन सिटी, दादू रोड, मोरो. प्रोप्राइटर अली बख्श खासकेली. अॼु ई राब्तो करियो 03002963322.
9: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है. हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम. अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है.
10: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
9: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है. तुम कौन सी यूज करती हो?
10: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है.
9: फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम.
10: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसकी गट रहती है गोरी, एंड विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन.
9: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है.
11: सुपर वाइट.
12: साईं, कुछ खबर अथव?
13: छा थियो आहे सोणी?
12: ॿिन ॾींहनि खां सोलर वारी बैटरी ख़राब थी पई आहे. नई बैटरी कॾहिं आणींदा?
13: सोणी, हिन महांगाई जे दौर में नई बैटरी जी ज़रूरत ई कोन्हे. पंहिंजी पुराणी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा. उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा.
12: साईं, पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी?
13: न न सोणी, सरगोदा बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि बैटरीअ जी.
12: वाह वाह, पोइ साईं जल्दी करियो, हाणे ई वञो ऐं बैटरी ठाराए अचो.
13: सरगोदा बैटरी सर्विस तां पंहिंजे यूपीएस, ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब

0: एमएसपी में नयू प्लेटू ए सेल लगाए बैटरी के नौ बनायो
1: ए हाँ हाने कहीं भी कंपनी जी सब वारी बैटरी में सब नवा सेल लगरायो सिर्फ 3500 रुपयन में 6 महीन की गारंटी सान सभी बैटरी जा सेल पिण मुनासिब कीमत में लगाए वन था। ये ऑफर महदूद मुद्दत लाए है तो पोए देर छाजी अजु ही अचो पैंजी पुरानी बैटरी के नौ बनायो
0: मिलंदड़ जुलंदड़ कम का धोखो न खाइंदा सुठे ए मयारी कम के लिए अजु ही तशरीफ आणींदा सरगोधा बैटरी सर्विस म्युनिसिपल स्टेडियम नज़्द नजम मेडिकल स्टोर वारी घिटी पुराणो बस स्टैंड लाड़काणो राबते के लिए मोहम्मद फारूक मोबाइल नंबर 03156829924।
2: खुशखबरी अल राफे फाउंडेशन ए पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन लाड़काने जे सहकार सा आपका रियायती क्लिनिक लाड़काने में हाँ मुख्तलिफ शोबन जा माहिर स्पेशलिस्ट ए तजुर्बेकार डॉक्टर हर किस्म जे बीमारियों जी इंतहाई रियायती फीस में चका सकंदा जड़ो के शुगर मैदे जिगर गुर्दे रगुन हडन दम छाती जहनी बीमारियों बारन जे बीमारियों का अलावा सभी बीमारियों जे इलाज लाए नामवर डॉक्टर्स मौजूद आहिन जड़ो के प्रोफेसर डॉक्टर हाकिम अबड़ो प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद शेख प्रोफेसर डॉक्टर आलम इब्राहिम सिद्दीकी प्रोफेसर डॉक्टर अजीज जलबाणी प्रोफेसर डॉक्टर बदर जुणेजो प्रोफेसर डॉक्टर अली हैदर बलोच प्रोफेसर डॉक्टर शेख खालिद मोहम्मद डॉक्टर नईम अहमद सुमरो डॉक्टर अरशद भुट्टो डॉक्टर श्याम लाल वगैरह आपका रियायती क्लिनिक लाड़काणो जिते मिले अवां के कराची के नामवर अस्पतालों जड़ो माहौल टाइम रोजानो सुबह जो 10 बजे का शाम जो 5 बजे ताई एड्रेस जीजल अमर वेलफेयर अस्पताल वेझो पासपोर्ट ऑफिस लाड़काणो राबते के लिए मोहम्मद अली अबड़ो मोबाइल नंबर 03400362646। खुशखबरी हाने अमाजे पहंजे शहर रेशम गली लाड़काने में दाऊद एस्थेटिक क्लिनिक जो इफ्तिताह थी चुको आहे डॉक्टर इरम जुणे जो MBBS RMP डी ड्रम ई ड्रम UK कंसल्टेंट कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ डर्माटोलॉजी चांडका मेडिकल कॉलेज ए अस्पताल लाड़काणो इते चमड़ी जे बीमारियों जड़ो के खारिश मल्लो पुराणो फट बग डढ मोहिड़ा वार चरियो चेहरे जा दाग चेहरे ते गैर जरूरी फुड़न जो इलाज गंजपन जो इलाज PRP जरिए हाइड्रा फेशियल जो इलाज मशीन सा औरतुन जे चेहरे ते गैर जरूरी वारन जो इलाज लेजर थेरेपी सा कयो वने थो डॉक्टर इरम जुणे जो चमड़ी जे बीमारियों जी माहिर एड्रेस दाऊद एस्थेटिक क्लिनिक अली शॉपिंग सेंटर रेशम गली लाड़काणो टाइम रोजानो 2 बजे का शाम जो 5 बजे ताई आचर ते शाम जो 4 बजे का रात जो 8 बजे ताई मुफ्त चकास कई वेंदी आहे याद रखंदा इंडस मेडिकल सेंटर लेडीज जेल रोड लाड़काणे ते रोजानो शाम जो 5 बजे का रात जो 8 बजे ताई आचर ते सुबह जो 10 बजे का मंझंद जो 2 बजे ताई जुम्मे ते 1 बजे का 3 बजे ताई मुफ्त चकास कई वेंदी आहे राबते ए मालूमात के लिए 03-6541-355।
3: हर चेहरो पंहिंजी अलग सुञाणप रखे थो हर सुञाणप के घुर्जे खास ख्याल एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम कंबाइंड वाइटनिंग फार्मूला डे एंड नाइट क्रीम सा गड अवां जी रोजानी स्किन केयर रूटीन जो हिस्सो नरमी जो एहसास ताजगी जो एतमाद केयर जेका हर डी अवां सा गड हुजे एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जो एतमाद हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम सा गड एक्सपोर्ट ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल कंदा शहर जे हर मेडिकल स्टोर एंड जनरल स्टोर ते दस्तियाब आहे हेल्पलाइन नंबर 03141705558।
4: अनीसा खैर तो आहे मंडकाए तो घुमे धक लगो तई छा
5: हाओ यार अब्दुल्ला एक्सीडेंट में जंग जो हडो भजी पियो तोखे त खबर आ गरीबी हाल आ पैसा भी कोन के सोचा तो ऑपरेशन किथा कराया
4: भाऊ परेशान न थी लाड़काने में डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी सूफी सतारी वेलफेयर ट्रस्ट तरफा ऑपरेशन मुफ्त करे तो इलाज भी अड़ो सुठो तो करे जो ठीक भी जल्दी थी वेंदे गरीब तोड़े अमीर लाए खुशखबरी डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी MBBS FCPS आर्थो हडन ए जोड़न जो माहिर सर्जन कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन सिविल हॉस्पिटल लाड़काणो इते रोजानो हडन ए जोड़न जे मरीजन जो फी सबील लाह इलाज कयो वने थो जैमे रोजानो चकास मुफ्त रिपोर्टू 40% फ्री एक्सरे 40% फ्री ऑपरेशन में डॉक्टर जी का भी फी न आहे असा वट हडन ए जोड़न जो सूर संधन जो सूर कुन रग जो सूर यूरिक एसिड चेल जो सूर शुगर जा फट हथन पेरन जो सुन थियण पैदाइशी टिड़ियल फिरियल पेरन जो इलाज भगल हडन जो ऑपरेशन बेहतरीन नमूने कयो वेंदो आहे एड्रेस कराची मेडिकल सेंटर लग घिंटी फाटक लाड़काणो टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे का रात जो 8 बजे ताईं आचर ते
1: सुबुह जो 10 बजे का शाम जो 3 बजे ताई छंछर ते क्लिनिक बंद रहंदी।
2: डॉक्टर साहब हर अंगारे ते शाम जो 4 बजे का रात जो 8 बजे ताई शान मेडिकल सेंटर वकील कॉलोनी लाड़काने में मरीजन जो मुफ्त मुआयनो कंदा।
4: राबते जे लाए मोबाइल नंबर 03158794117 0333754061।
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

हा भई छा अनादो खे समझाया। ये जेके माण्हू आहिनि न अॼुकल्ह टू फेसिस माण्हू, इन्हनि खे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि ॾाढी ख़र्च थींदी हूंदी, छो त हू ॿिन्ही चेहरनि ते लॻाईंदा हूंदा। अगर तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो आहे त मूंखे ॿुधायो जल्दी जल्दी, जीअं असांखे ख़बर पई त बाबा तव्हां बि इस्तेमाल कई आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ऐं तव्हां बि यकीन सुहिणा थी विया हूंदा। अच्छा, यदि तव्हांजा कुझु मैसेजेस आहिनि त मैसेज तरफ़ अचूं था, पैनल जी तरफ़ अचूं था, त पैनल ते तव्हांजा कुझु मैसेजेस आहिनि, उन्हनि खे सभ खां पहिरीं पढ़ी वठूं। सभ खां पहिरियों जेको मूंखे मैसेज मिलियो आहे उहो मिलियो आहे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आई एम अनवर अली बलोच फ्रॉम सोनाड़ी फ्रॉम, अच्छा वो है जनाब, आपने टॉपिक का जवाब दिया है। अच्छा, वो कैसे हो सकता है भाई, बताएं मुझे जरा। और मकसूद मलह हमारे साथ मेहरापुर से कहते हैं कि हेलो सिद्रा मुस्कान, आपका शो बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक, आई लाइक योर शो, मुझे निगत नाज का गाना सुनाएं। हाजिर हाजिर, हिन गाने खां पोइ निगत नाज जो गानो हलंदो। और चाचा खालिद हमारे साथ तव्हां गाने जी फरमाइश कई आहे, ओके चाचा। वोट नबीदा बंबरो नारो खां इमाम ॾिनो बंबरो भाई हमारे साथ, भाजू मोहबत तूं आहीं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल आहियो। और ये बकर अली हमारे साथ हैं, बकर अली फ्रॉम केची, केची उन्नड़, सलाम सिद्रा जी, वालेकुम अस्सलाम, कहते आप ही आप कैसी हो। आज के टॉपिक का जवाब है दुख और दर्द, हाय अल्लाह। अच्छा, हे भी माना गाने जी कठ थे, या मां सोचा पई पांजो तलाए जा तरक्की बाबा। ओके बकर अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ है पोएट्री अर्ज है, गरीबों की है, और गरीबों की राय और फर्क लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, फारक। अच्छा, गरीबों की राय और फारक लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, क्यों भला नहीं लेनी चाहिए? जयपाल भाई आप बताइए मुझे जरा, फारक की तो समझ आती है, गरीबों की क्यों नहीं, ये बताइए जरा। और कहते हैं कि भाऊ अर्ज करते हैं, लोग कहते हैं कि किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना जरूरी हो जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब किरदार पर बात आ जाए तो बात ही खत्म हो जाती है। जयपाल भाई ओके ओके, समझ गए समझ गए। और कहते हैं अर्ज किया है, भाऊ उदास मत होना क्योंकि मैं साथ हूँ, सामने ना सही पर तेरे आसपास हूँ, पलकों को बंद करके जब भी दिल से देखोगे मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जयपाल भाई कराची से मैं सुन रहे हैं, क्या बात है जयपाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और अब्दुल्ला महर हमारे साथ कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज की है मैंने, और मेरी फैमिली ने भी रिजल्ट ब्यूटीफुल मिला है। डेडिकेट आपको सॉन्ग फायजा अली फेवरेट सिंगर। ओके जी, फायजा का गाना आपको जरूर डेडिकेट कर देंगे क्योंकि आप और आपकी फैमिली डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती है।

यको साल जी त खबर कोन्हे अलाए किथे हुए बाक़ी हाणे कुझु महीननि खां त असांजे प्रोग्राम में आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में ॿुधे पियो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे इस्तेमाल बि करे पियो ॾियो हाल हवाल ईअं आहे न बिल्कुल ईअं ई आहे अच्छा ये हमारे साथी अब्दुल्ला महर मीरपुर खास के डेडिकेट आपको फायजा अली का गाना जी जी भाई आपके लिए फायजा का गाना लगाते हैं और हमारे साथ है एस डी जेपाल हेलो आरजे भाऊ हाउ आर यू खुश रहें थैंक यू आप भी मेरे प्यारे भाई और कहते हैं भाऊ काम में हूँ नेक्स्ट ज्वाइन करूंगा शो एंजॉय ओके और ओके ओके बहुत शुक्रिया भाई जान एडम कहती है कि ओ माय डियर दिलबर दोस्त मुझे लग रहा है कि बस आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आप जानती हैं कि मैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रही हूँ समझ रही हैं तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और हमारे साथ ही हमारी फजली कहती है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सिद्रा मुस्कान कैसी हो स्वीटी सलाम टू कायनात और सब सिस्टर्स को मैं लंच कर रही हूँ एंड आपका शो भी सुन रही हूँ लंच करें बिस्मिल्ला करें जी जी बिस्मिल्ला करें आप खाएं पिए एंजॉय करें और वाह वाह वाह वाह माशाल्लाह आप अच्छी कुकिंग करती हैं खाया नहीं लेकिन हाँ बता सकती हूँ

0: वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, मयारूं हलनि थियूं। मां मयार ॾियांव, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कोन कई अथव, तव्हां ते त मयार ठहे बि थी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो बाबा, इस्तेमालु करे तव्हां मूंखे ॿुधायो त तव्हांखे रिज़ल्ट कीअं मिलनि पिया। किशोर भाउ कहते की हल हू दौर हो, माण्हू इशारो सम्झी वेंदा हुआ। अरे कहना क्या चाहते हो, कुछ लोगों के कमेंट्स ऊपर भी चले गए होंगे तो जिनके नहीं मैं रीड कर सकूं, तो आप जरा ऐसा कीजिएगा कि दोबारा अपना कमेंट पेस्ट कर लीजिएगा, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, उनका अलावा वहीद वफाई हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। जी क्या हाल है आपके, माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम फ्रॉम जेकब आवाज से आपके साथ हूँ, बहुत शुक्रिया। चाचा खालिद कहते हैं कि मूं साहिर बगाजो गानो हा सुल्तान लाल साहिर बगाजो गानो लाइन था पर जेका तव्हां फरमाइश कई आहे न उहा एरिया त हुनखे लास्ट में ई लॻायो वञे, सो तव्हांखे थोरो सबर करणो पवंदो। फरवा तव्हां टॉपिक जो जवाब ॾिनो आहे, ओका
1: चाल सदिए जे आहे बराबर पंहिंजे सूरन जी मां तो सा कया फेरी कईगा।
0: हां भाई हां, मुझे तव्हां चवण ते दवा न खाइजो, बस मुझे चवण ते तव्हां प्रोडक्ट जो यूज़ करे सघो था, छो त प्रोडक्ट जे बारे में तव्हांखे जेका बि डिटेल ॾींदी आहे उहा सफ़ा सही ॾींदी आहे। बाक़ी हा, दवा जेका आहे तव्हां डॉक्टर खां पुछी करे खाईंदा कयो। बाकी अगर तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो था त पोइ त वाह वाह आहे, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल तव्हांजे करे बि जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सघूं था, पर जॾहिं तव्हां नंबर ते राबितो करे पंहिंजो हाल अहिवाल ॿुधायो त किथे किथे नथी मिले, असां कहिड़ी ख़बर त भला किथे किथे अञा ताईं अवेलेबल कोन थी आहे। सो तव्हां बि इस्तेमालु कयो ऐं तव्हां बि ख़ूबसूरत थियो, ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स खे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराईंदा रहो। हिते टाइम थियो आहे बाबा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾींदासीं, तव्हां कारी न वञो, हिते वेठा हुजो, ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you. It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: Khoobsurti hai jo asal raaz. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहुं कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: खुश्क ऐं बीरोनो की स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिंमें आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
4: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुजो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की।

जिंदगी ए जिंदगी तेरे फैसले बड़े सख्त ठहरे, जिन्हें अपना समझा वही अजनबी निकले, और जिनसे उम्मीद बांधी वही दिल तोड़ गए। हमने तो हर मोड़ पर तुझे खुश दिली से कबूल किया, मगर तूने हर मोड़ पर हमारे हिस्से में कोई नया दुख और कई नई आजमाइश लिख दी। कभी हालात ने तोड़ा, कभी अपनों ने, और कभी उन यादों ने जिन्हें हम चाह कर भी अपने दिल से जुदा न कर सके। हम मुस्कुराते रहे ताकि दुनिया को लगे कि सब ठीक है, मगर अंदर कहीं एक शख्स रोज थोड़ा थोड़ा टूट पा रहा है, और जिन ख्वाबों को आंखों में सजाया था वक्त ने उन्हें हकीकत बनने से पहले ही मिट्टी में दफन कर दिया। अब ना किसी से शिकवा है, ना किस्मत से कोई गिला, बस दिल चाहता है कि कुछ लम्हों के लिए ये जिंदगी अपनी तमाम शक्तियों समेत खामोश हो जाए। और ए जिंदगी, अगर यही तेरा दस्तूर रहा तो फिर इतना हौसला भी दे कि हम अपने टूटे हुए वजूद के साथ बाकी सफर तन्हा तय कर सके, क्योंकि किसी और को खोने की, किसी और को छोड़ने की अब हिम्मत नहीं रही।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही मतलब अच्छा सा गाना हमने एंजॉय किया. हमारे पास एक और गाना मौजूद है जो कि होने वाला है जी, मतलब एक अच्छे वाले सिंगर है, तो इनका हम गाना सुनेंगे. इसको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, अब सही है.

ओके जी, मोहब्बत न रही आ बाबा, रही छा कजे दुनिया में, रही छा कजे बाकी काडे वेंदो। कोई भी वो प्लान ठाया हुआ जा बेला। चलो खैर, यहाँ पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं।

ओके जी, गाना तो अच्छा है, गाना अच्छा है, नो डाउट. और आप ऐसा कीजिए, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जानिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जानेंगे तभी तो आपका दिल करेगा कि भाई हाँ मुझे भी लगानी चाहिए. क्योंकि वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने लगाकर देख लिए, लेकिन जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करेंगे, ट्राई करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में मैं इतना आखिर क्यों बताती हूँ. क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये चीज तो हो ही जाएगी कि भाई आपके चेहरे पर जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारे दूर हो जाते हैं. सबसे बेहतरीन बात की डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है और ये 2-in-1 फार्मूला है. अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने लगेंगे ना, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये फायदा तो आपको देगी कि भाई आपके चेहरे पर जितने भी ये टॉक्सिक से एक्नी आ जाते हैं या फिर ये बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो क्या आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा बुरा असर छोड़ जाते हैं, तो उन तमाम चीजों को भी खत्म कर देगा. और साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको मिलता है परफेक्ट वाला निखार. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना, ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का ना एड किया गया है, और ये आपको फेशियल का जो है ना वो रिजल्ट देने वाले हैं. तो अगर आप चाहते हैं आपके घरों में कोई शादियां हो रही हैं या फिर आप बाहर जाकर कोई महंगे से फेशियल नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो आप घर बैठे डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लें, बस ये काफी हो जाएगा. और जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही वाकई आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं. उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो लोग इस्तेमाल करें उनके भाई बड़े अच्छे से हमें पॉजिटिव से रिस्पॉन्स मिलते जा रहे हैं, तो आप कब इस्तेमाल कर रहे हैं जरूर से बताइएगा. उनके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी बाबा यह भी खास गाल है, यह चीज मैं तक बुधाईंदी हल छो तो कुछ मानू वरी सोची ना हूं सिदरा जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बुधाई थी, तो इनमें फेशियल जी क्वालिटीज शामिल है, अगर तुम इस्तेमाल करना था तुम्हें फेशियल जो रिजल्ट मिल तो इस्तेमाल कर तो क्रीम लगाए कर मसाज कर इस्तेमाल कर. अगर तुम इस्तेमाल करण शुरू कर तो मसाज न कर ही नाइट क्रीम है, बजाय नाइट क्रीम है, पर अंदर जी चीजों एड थियल रिजल्ट फेशियल वो डेण वाल. तो जडे भी तुम कोई भी नाइट क्रीम जो इस्तेमाल कर तो उनके तुम सिर्फ आराम से पानी उंगलियों की मदद से लगाईंदा रहो, ये लगाए क्रीम थोड़ी तुम्हारे चेहरे से नजर अचे, छो तो कुछ मानू वरी लगाए छा सफा क्रीम जो जज्ब कराईंदा स्किन के अंदर, स्किन के अंदर क्रीम जज्ब न करायो, वह पान जज्ब थी वेंदी, तुम स्किन से सफा भला रिजल्ट छे डी. तो अगर तुम ये सब चीजों का अवॉइड कर मसाज भी कर स्किन से, स्किन के अंदर क्रीम के जज्ब भी करायो था, तो जाहिर गाल रिजल्ट न मिली सकता जो तुम हासिल करना चाहो था. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के प्यार से सुकून से लगाया राजे टाइम से लगाओ, लगाने का पैर पानो फेस वॉश कर डी स्किन फेस वॉश का, उनका जी तुम दिसंदा तो तुम्हें सफा भला रिजल्ट मिली चुका होंदा. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है एंड डी स्किन जो फेस वॉश है, ट्राई कंदा रहो, हमेशा जलाए पांजे खूबसूरत से चेहरे के मजीद खूबसूरत बनाए छो. उनका अलावा असने प्रोग्राम की लास्ट लिंक है बाबा डाढ़ो भलो अस गानों बुधोसी, ये ट्रेक है जैसे असि अलीशा फरमाइश कई है, जो गानों अस बुधोसी उनकी फरमाइश असा किशोर भाई कई हुई, जो उनका पे बुधो चाची की फरमाइश थे हलो. सो अमां जो बिल्कुल फरमाइशू आन लिस्ट फुल थी वही है बाबा, हाँ गाना हारजन था सो अधिक को भी गाने की फरमाइश न करे.

बिल्कुल सी आपके कमेंट्स और मैसेजेस की जाने भी आ जाते हैं। टाइम बहुत थोड़ा जाके बचा है और यहाँ पर हमारे साथ फहीम भाई कहते हैं कि दा सुबाने फेस वॉश वठंदस लाड़काने मां जी बिल्कुल तां फेस वॉश वठ जो लाड़काने में तवा के आराम से मिली वेंदी आई अच्छा रमजान भाई हमारे साथ मौजूद कहते हैं वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई आपको वेलकम इन खुश आमदीद कल परसों आपका गाना लगाया तो था और फरवा कहती हैं ओके ओके फरवा बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे और रमजान भाई लिखते हैं कि दिल उदास हो तो बात कर लेना दिल चाहे तो मुलाकात कर लेना हम रहते ही आपके दिल में वक्त मिले तो तलाश कर लेना ओके भा ओके और कहते हैं प्लीज सॉन्ग प्ले करना भा हाजिर टाइम बची तो हलाई बैठू था और ये हमारे साथ है अब्बास के साथ अब्बासी भाई लिखते हैं कि मुस्कान देर इज मैजिक इन योर स्माइल व्हेन यू स्माइल माय होल डे बिकम ब्यूटीफुल ओके ओके और इन खां अलावा अलीशा हाँ ठीक है अलीशा तुम पांजो गानो एंजॉय कर।

वाह साईं वाह, वाह साईं वाह। इरम हमारे साथ बहुत शुक्रिया इरम। अल्लाह साईं तवां जी जिंदगी में आसानियूं आणे, अल्लाह करी तवां खुशियूं माणियो। सही आ। और गोठ मोमन तैयब थेबू का हबीबुल्लाह थेबू कहते हैं तवां जो शो विडी नाई साईं सलाम तवां के। वालेकुम असलाम प्यारा भा। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिद्रा साहिबा, तवां जो तवां जा सब प्रोग्राम भला आहे। अच्छा मुझा तो सब प्रोग्राम भला आहिनि, पर तवां पांजो नालो त लिखियो कोन आहे। खैर असां सगड़ मौजूद आयो, नालो पांजो लिखंदा कयो। अब्दुल सतार बमरू भाई हमारे साथ कहते हैं सलाम, वालेकुम असलाम। अब्दुल सतार भाई लिखते हैं जबरदस्त प्रोग्राम, जबरदस्त आवाज, थैंक यू। परवा कहती हैं आप भी तो हमारी डॉक्टर है ना, आप 2 घंटे क्रीम के बारे में बताते हो, वो भी बगैर फीस के। देख लें बस, आप इस्तेमाल करें तो आपको पता चले कि ये आपको 2 घंटे में क्यों बताते हैं। क्योंकि भाई डी स्किन प्योरी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई सदा इतना क्यों बताती है डी स्किन प्योरी क्रीम के बारे में।

भैया आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। और बलोच के कहते हैं कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं, अल्लाह जाए बुदा कसम दे। जमशेद फारूकी हमारे साथ हैं, कहते हैं प्यारी मरियम फारूक और फारूकी जारिश शहमीर और मुजफ्फरगढ़ से आप हमारे साथ मौजूद हैं, सबको वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया के साथ। हाँ बाबा असा के गानों बुधी भी मजो अची हाँ असा लिस्ट में जो लास्ट ट्रेक है वो बुधी वेठू था, तो बिल्कुल आप प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आपके लिए हमने हर जगह अवेलेबल करा दिए हैं, अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो जरूर से कीजिएगा। अगर आप अपने करीबी चैनल स्टोर पर अवेलेबल कराने वाले हैं तो आपको जो प्रोग्राम के अंदर नंबर बताया जाता है उसके ऊपर रابطہ किया करें, रابطہ करेंगे तो भाई साहब आपके लिए आसानी हो जाएगी कि बस आप नंबर के ऊपर रابطہ कर लेंगे, कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे, उन्हें बता देंगे कि भाई हमारे यहाँ नहीं मिल रही डी स्किन ब्यूटी क्रीम या फिर डी स्किन फेस वॉश, तो वो अवेलेबल करा देंगे। तो जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए, खूबसूरती की दुनिया में आप भी कदम रखिए और आप भी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन।

दर्द दिल पे वही बोल रही है ना ना ना ना। अच्छा था। और बशीर बलोच हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और आप हमें सुन रहे हैं कराची कायदाबाद से, बशीर अहमद बलोच एंड आरजे नूर मोहम्मद भुट्टो को सलाम। ओके, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं। अखलाक भाई कहते हैं नाइस यू, थैंक यू वेरी मच कहते हैं। जी जलाल जी, जी जी ना ना ना ना बोले। और किशोर भाई कहते हैं अदा तू जा पंज बजे यारे प्रोग्राम जी पोस्ट थे कुछ लिखी भी न था सकूं। हाँ हाँ बिल्कुल ही आहे, पहिरियां थोरो ईअं हो त थोरो देर सां बि बंदि थिए, हाणे त वरी ॾींहों ॾींहों जेको आहे न सफ़ा अॻिते थींदो थो अचे टाइम। लॻे थो मूंखे त हिकिड़ो वरी टाइम ईंदो जॾहिं पोस्ट अपलोड कंदासीं त हुन टाइम बसि बंदि थी वेंदी।

ओके जी, बहुत ही प्यारा गाना, एंजॉय कीजिए। और इस गाने के साथ आप लोगों से लेते हैं जी इजाजत, क्योंकि हमारे जाने का वक्त आ चुका है। और शबीन जतोई भाई, वालेकुम अस्सलाम, आपको प्रोग्राम पसंद आया उसके लिए बहुत शुक्रिया। और बाकी तो पैनल पर सारे मैसेजेस ही तकरीबन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। आप सब लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को यूज करते रहिएगा। कहीं पर कोई गलती हो गई तो माजरत ख्वाह, जिनके फीडबैक रह चुके, जिनके गाने रह चुके, सबसे माजरत। सो मोकलानी नाही बाबू सिंह, सलामत सा सलामत, हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by...
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: इनके शहीद कयो भारत बुनियादी इंसानी हक ने आलमी कानून जी पासदारी यकीनी बनाए हथे खाली शहरन ते बिना जवाज ए चिर डियारींदर ताकत इस्तेमाल कई वही एडन वाक्यन के रोकण लायो पाव वरता वंजन वफाकी गरु वजीर मोहसिन नकवी जी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात गुजरियल ढी अपोजिशन से थियल गाल बाबत आगाह कयो जरियन मूजिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ए मोहसिन नकवी जी मुलाकात तकरीबन डेढ़ कलाक जारी रही वजीर आजम अपोजिशन से गाल बाबत मोहसिन नकवी के हिदायतू भी डिन्यू

0: पीटीआई लांग मार्च जो सर वापस वठंदी या हुकूमत अपोजिशन जा मुतालबा तस्लीम कंदी। हुकूमत ऐं अपोजिशन विच में ॻाल्हियुनि जो बि॒यो ऐं फ़ैसिलाइतो दौर कुझु देर में शुरू थियण वारो। स्पीकर अयाज़ सादिक जी ज़ियारत हेठि थींदड़ हुकूमत ऐं अपोजिशन जी ॻाल्हियुनि में ॿई धुरियूं हिक ॿिए खे गुज़िरियल ॾींहुं पेश कयल तजवीज़नि ते जवाब ॾींदियूं। हुकूमत गुज़िरियल ॾींहुं पीटीआई खे लांग मार्च ईरान सऊदी अरब ते हमला कंदड़ जमी हुसैन खां लातालगी ज़ाहिर करे छॾी। ईरानी परदेही वज़ीर हुसैन ते हमले करण बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾेई छॾी। परदेही मीडिया मूजिबि ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराकी हुसैन जे विच ओभर में अरब मुल्कनि ते हमलनि खां लातालगी ज़ाहिर कंदे हमलनि बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾिनी आहे।
1: दुश्मनी असांजी हुजे हा त प्लस असां सरियाम जेका रोड ते कारोबार न कयूं। असांजो मुतालबो आहे त असांजा हक़ खपे न खपे।

रतो देरो में हथियारबंदनि जी दुकान ते फायरिंग, पंज ॼणा क़तल मारिजी वियलनि में पीउ ऐं संदसि ॿ पुट शामिल आहिनि। फोतियुनि में रजब घांगरो, संदसि ॿ पुट रियाज़ ऐं कुर्बान घांगरो शामिल आहिनि। बिलावल घांगरो ऐं वाटेड़ो अब्दुला बिरोही बि गोलियुनि जो खाध बणिजी विया। पुलिस जो चवणु आहे त घांगरा बिरादरी जो मुख़्तलिफ़ बिरादरीनि सां तकरार हलंदड़ आहे। घांगरा बिरादरी जे मारिजी वियल चइनि ॼणनि जो तालुक रतो देरो भरिसां ॻोठ वधापुर सां आहे ऐं मक़तूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं केपीके ऐं बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं, 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ॾखण वज़ीरिस्तान में ख़ारजी दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो, जंहिं दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान जे माश्किल में पुलिस चौकी ते हमले बाद फरार थींदड़ 6 दहशतगर्द मारिजी विया। डिस्ट्रिक्ट बार पारां सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ रैली, वकीलनि सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं रद्द करण जो मुतालबो करे छॾियो। अॻवाणनि चयो आहे त सिंध जी वहदत ते कंहिं बि क़िस्म जो समझौतो न कयो वेंदो। सिंध खे इंतिज़ामी बुनियादनि ते विरहाइण वारनि मनसूबनि खे रद्द कयूं था। गंभट में 3 ॾींहं अॻु आरिजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़े दौरान क़तल थियल नौजवान जे वारसनि जो एहतजाज। मक़बूल अजीब आरिजो जे अमड़ ॿियनि औरतनि सां गॾिजी पाक किताब खणी एहतजाज कयो। औरत चयो आहे त मुंहिंजे पुट खे नौकरी ॾियारण जे बहाने कातिलनि 5 लख वरिता ऐं पैसा वापसि घुरण ते नौजवान खे क़तल कयो वियो। जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि। पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाध ख़िलाफ़ अवाम सरापा एहतजाज। बणियल रादड़ में चिंची रक्षा ड्राइवर हलाईंदड़ रैली कढी ऐं धरणो हयो आहे। उडेरो लाल विलेज में पेट्रोल जे वधंदड़ अघनि ख़िलाफ़ चिंची ड्राइवरनि पारां एहतजाज कयो वियो आहे। मुज़ाहिरीन चयो त पेट्रोलियम शयुनि अघनि में लाॻीतो वाध सबबि असांजे रोज़गार सख़्त मुतासिर थी रहिया आहिनि, तेल सस्तो कयो वञे। कंबर में वधंदड़ बदमनी ऐं पुलिस जे नाहेली ख़िलाफ़ ॿिए ॾींहं बि एहतजाज जारी। ज़िलो सिंगारियो जिदोजहद कमेटी ऐं शहरनि तरफ़ां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। अॻवाणनि चयो आहे त कंबर पुलिस जी नाहेली सबबि समूरो ज़िलो बदमनी जे वर चढ़ी वियो आहे। रोज़ धाड़ा फुरू ऐं चोरी

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की।

0: टर्मरिक क्रीम इन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाने अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत ना करे त हां। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकला है। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी एमसीबी बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खिते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: सुनिए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सुनते जो आवाज बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल
2: खत्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: 91.6 सिंध जो आवाज बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

भारतीय बॉर्डर फोर्स जी फायरिंग में बिन पाकिस्तानन जी शहादत ते पाकिस्तान जो सख्त एहतजाज। भारतीय नाज़िम महमूद परदेही आफिस तलब एहतजाज जी खत भी डिनो वयो। हथे खाली शहरन के दर अंदाज करार देण वारे भारतीय कोशिश भी रद्द। वाकियो बुनियादी इंसानी हकन ए हक जिंदगी जी संगीन भंजकड़ी करार। भारत खां जिम्मेवार बॉर्डर फोर्स जे अहलकारन खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। परदेही खाते मौजूद भारत बॉर्डर फोर्स हथी खाली बेगुनाह पाकिस्तानी शहरन के शहीद कयो। भारत बुनियादी इंसानी हकन ए आलमी कानून जी पासदारी यकीनी बणाए। हथे खाली शहरन ते बिना जवाज ए चिट ॾियारींदड़ ताकत इस्तेमाल कई वई। अहिड़न वाकियन के रोकण लाइ उपाउ वरिता वञनि। वफाकी गरु वज़ीर मोहसिन नकवी जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां मुलाकात। गुज़िरियल ॾींहुं अपोज़िशन सां थियल ॻाल्हियुनि बाबति आगाह कयो। ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं मोहसिन नकवी जी मुलाकात तक़रीबन ॾेढ कलाक जारी रही। वज़ीर आज़म अपोज़िशन सां ॻाल्हियुनि बाबति मोहसिन नकवी खे हिदायतूं बि ॾिनियूं।

0: कुछ देर में शुरू थियण वारो। स्पीकर सादिक जी ज़ारत हेठ थींदड़ हुकूमत अपोजिशन जी ॻाल्हि में ॿई धुरियूं हिक ॿिए खे गुज़िरियल ॾींहुं पेश कयल तजवीज़नि ते जवाब ॾींदियूं। हुकूमत गुज़िरियल ॾींहुं पीटीआई खे लॉन्ग मार्च ईरान सऊदी अरब ते हमला कंदड़ जंगी हौसियुनि खां लातालगी ज़ाहिर करे छॾी। ईरानी परडेही वज़ीर हुसैन ते हमले करण बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾेई छॾी। परडेही मीडिया मूजिब ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराकी हुसैन जे विच ओभर में अरब मुल्कनि ते हमलनि खां लातालगी ज़ाहिर कंदे हमलनि बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾिनी आहे।
1: दुश्मनी असांजी हुजे आहे प्लस असां सरियाम जेका बि रोड ते कारा वार न कयूं असांजो बि न करबो आहे त असांजा को खपे न खपे।
0: रतो देरो में हथियारबंदनि जी दुकान ते फायरिंग, पंज ॼणा क़तल मारिजी वियलनि में पीउ ऐं संदसि ॿ पुट शामिल आहिनि। फोतियुनि में रजब गांगरो, संदसि ॿ पुट रियाज़ ऐं कुर्बान गांगरो शामिल आहिनि। बिलावल गांगरो ऐं वाटेड़ो अब्दुला बिरोही बि गोलियुनि जो खाद बणिजी विया। पुलिस जो चवण आहे त गांगरा बिरादरी जो मुख़्तलिफ़ बिरादरीनि सां तकरार हलंदड़ आहे। गांगरा बिरादरी जे मारिजी वियल चइनि ॼणनि जो तालुक रतो देरो भरसां ॻोठ वदापुर सां आहे ऐं मक़तूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं केपीके ऐं बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब ॾखण वज़ीरिस्तान में ख़ारजी दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो, जंहिं दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान जे माश्किल में पुलिस चौकीअ ते हमले बाद फरार थींदड़ 6 दहशतगर्द मारिजी विया। डिस्ट्रिक्ट बार पारां सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ रैली ख़िलाफ़ साज़िशूं रद्द करण जो मुतालबो करे छॾियो। अॻवाणनि चयो आहे त सिंध जे वहदत ते कंहिं बि क़िस्म जो समझौतो न कयो वेंदो। सिंध खे इंतज़ामी बुनियादनि ते विरहाइण वारनि मनसूबनि खे रद्द कयूं था। गंभट में टे ॾींहं अॻु आरिजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़े दौरान क़तल थियल नौजवान जे वारसनि जो एहतजाज मक़बूल अजीब आरिजो जे अमड़ ॿियनि औरतुनि सां गॾिजी पाक किताब खणी एहतजाज कयो। औरत चयो आहे त मुंहिंजे पुट खे नौकरी ॾियारण जे बहाने कातिलनि 5 लख वरिता ऐं पैसा वापसि घुरण ते नौजवान खे क़तल कयो वियो। जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि। पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाद ख़िलाफ़ अवाम सरापा एहतजाज बणियल रादण में चिमची रक्षा ड्राइवर हलाईंदड़ रैली कढी ऐं धरणो हयो आहे। उडेरो लाल विलेज में पेट्रोल जे वधंदड़ अघनि ख़िलाफ़ चिंकी ड्राइवरनि पायो वियो आहे। मुज़ाहिरीन चयो त पेट्रोलियम शयुनि अघनि में लाॻीत सां जे रोज़गार सख़्त मुतासिर थी रहिया आहिनि। तेल सस्तो कयो वञे। कंबर में वधंदड़ बदमनी ऐं पुलिस जे नाहेली ख़िलाफ़ ॿिए ॾींहं बि एहतजाज।
2: चॉकलेट कैरमेल
0: सबब समूरो ज़िलो बदमनी जे वर चढ़ी वियो आहे। रोज़ धाड़ा फुरूं ऐं चोरियूं मामूल बणियल आहिनि। आईजी सिंध अमुन बहाल कराए। फिरोज में जेल सुख पुलिस ऐं सेप्को अमलदारनि विच में लोड शेडिंग तां तकरार। सेप्को जा लाइनमैन जेल मुंतकिल। मिठाणी रोड ते डी फिटिंग वटि जेल पुलिस पहुची सेपो जे लाइनमैननि खे खणी। जेल सुप्रिटेंडेंट जो चवण आहे त जेल में अतराधू लोड शेडिंग कई पई वञे। बार बार रोकण बावजूद से लोड शेडिंग करण बदिरां जेल जी डी फिटिंग लाहे वञनि था। सेपको मुलाज़िमनि जो जेल इंतज़ामिया ते हिसाइण जो इल्ज़ाम।

मेहड़ में साफ पानी की फरहमी न थियण गंदगी के आज़ार खिलाफ़ एहतजाज जीडीए पीटीआई कोबी घंटा घर चौक तक रैली कढ़ी वही है। अगवाणन मेहड़ में साफ पानी की फरहमी न गंदगी के आज़ार रोड रस्ता उखड़ियल आवाम के बुनियादी सहूलतू फराम क्यों वन।

ट्रेन में बरशहरी बोरी इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया। गाॾियूं बि लुड़ी वयूं। शहरनि घरनि ताईं महदूद थी वियो। फ्रांस में शागिर्दनि जो एहतजाज। 1000 स्कूल बंदि। मुज़ाहिरनि केतिरनि ई इमारतनि ऐं गाॾियुनि खे बाहियूं ॾेई छॾियूं। पुलिस 2000 खां वधीक शागिर्दनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। चकरियुनि में 305 पुलिस ऑफिसर ज़ख़्मी थिया। अमलदारनि मौजूब सूरत।

0: व्हाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
3: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
2: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
2: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट।
5: खुशखबरी। हाने अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकला है। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अब प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: वफाकी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां लाहौर में मुलाकात गुज़िरियल ॾींहुं अपोज़िशन सां थियल ॻाल्हियुनि बाबति आगाह कयो। ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं मोहसिन नक़वी जी मुलाकात तक़रीबन ॾेढ कलाक जारी रही। वज़ीर आज़म अपोज़िशन सां ॻाल्हियुनि बाबति मोहसिन नक़वी खे हिदायतूं बि ॾिनियूं।

साइंसी तहक़ीक ऐं तरक़ी खे बहितर तिबी नतीजनि में तब्दील करणो पवंदो। सिंध हुकूमत मयारी तिबी सहूलियतूं फराहम करण लाइ पुरज़म आहे। कराची जे नाइ अस्पताल में तकरीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर मुआद अली शाह चयो आहे त जदीद तिबी टेक्नोलॉजी ताईं रसाई खे वधाइणो पवंदो। सिंध हुकूमत सिहत वारे शोबे में सहूलियतूं ॾींदी।

सीवरेज प्लांट स्तरी तहत ट्रीटमेंट प्लांट वन जो पाल थियण सीवरेज निज़ाम में अहम अघ भराई एकवंजाह मिलियन गैलन रोज़ानो 100 मिलियन मनसूबो आहे। वरी पाल करण सिंध हुकूमत पारां ट्रीटमेंट 5 अरब रुपया रखिया विया आहिनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
4: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
3: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: खुशखबरी। हाने अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि एक दफो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलियत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एम

एसबीआई बैंक जे साम्हूं नया पुल हैदराबाद वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770.

इस वक्त बज रहे हैं, टाइम हो चुका है 5:18 यानी 5:18 हो चुके हैं हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट हुए हुए। तो जी बिल्कुल, आप लोग मेरे साथ हैं और शाम 7 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगी। मैं कौन हूँ? आप सबकी अपनी आरजे, वही प्यारी सी आवाज मुस्कान और अंदाज के साथ आरजे कोमल खान। तो जी बिल्कुल, आप लोग सुन रहे हैं इस वक्त आवाज का रिश्ता लाइव सखर से। मैं आपके साथ हूँ, आपके अपने आरजे कोमल जी फेमेटिएट सखर से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, आवाज का रिश्ता, जहाँ आवाज वहाँ रिश्ता तो बन ही जाता है, जिससे दिल तक का रिश्ता है। आपका अपना प्राइवेट शो है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जी फेमेटिएट के पेज पर भी और लाइव मुझे रेडियो पर सुन सकते हैं। तो जी, जिसने मुझे रेडियो पर लाइव ज्वाइन कर लिया है और जो मुझे लाइव ज्वाइन कर चुके हैं फेसबुक पेज पर हमारे, तो जी बिल्कुल आ जाओ, कमेंट करके बताएं कि मुझे अभी इस वक्त कहां से सुन रहे हैं, कहां कहां मेरी आवाज उनकी समाधों से टकरा रही है, पाकिस्तान के किस किस शहर के, किस शहर की किस गली की, किस गली कूचों कोनों में जा रही है आवाज। तो जी बिल्कुल, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे सवाल जवाब बातें आप लोगों के साथ प्रोग्राम में चलती रहती है। और ये वो प्रोग्राम है जहां आपके ख्यालात को, एहसास को, अल्फाज को, आपके हाल के जिस आवाज दी जाती है वो आवाज बनती हूँ मैं, आप सबकी अपनी आरजे कोमल खान। तो जी बिल्कुल, आ जाइए आप लोग, शाम का ठंडा ठंडा सा टाइम है और एक बार अक्टूबर का फर्स्ट शो है, पहली शाम अक्टूबर की है ये। और अपने तमाम जाने वालों, अपने लिसनर्स, अपने दोस्तों, अपने अहबाब अजीज वकारी को सबके नाम कर दिए, चैनल अपने चैनल के भी नाम कर दिए हमने आगे जी। तो इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हैं कि मुझे पता है कोई घूम रहे होंगे, कोई ट्रिप पे होंगे, कोई ट्रैवल पर होगा, कोई घर के घर में लेटा होगा, बैठा होगा, या फिर अपनी छत पे कोई बैठा होगा, या कमरे में आराम कर रहे होंगे और मुझे खामोशी से लाइट ऑन ऑफ करके सुन रहे होंगे, ऑन कह रहे थे गलती से। अच्छा जी जनाब, तो वैसे भी मौसम थोड़ा थोड़ा तब्दील हो चुका है, ठंडा ठंडा सा मौसम भी आ चुका है। और आज का मेरा अच्छा सा टॉपिक है कि अच्छा टॉपिक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और फिर हम उस टॉपिक पर बात भी करेंगे। क्या वाकई ही ये टॉपिक है? वैसे तो मेरा कुछ और था लेकिन मुझे फिर ये जहन में आ गया किसी वजह से, तो मैंने कहा जिसको क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए इस बात को। तो जी बिल्कुल, कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते। अब इससे आपके माइंड में क्या बात आती है आप लोग मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा। तब तक हम थोड़ी अक्टूबर को वेलकम कर लेते हैं, अक्टूबर की भी बात कर लेते हैं। अक्टूबर की पहली शाम हमारे शो की है तो हम इसे अक्टूबर के नाम कर देते हैं।

सी शाम आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे जरूर बताएं, मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आती सर्दियां और जाती गर्मियों का मौसम है। गर्मी को करें बाय बाय, सर्दी को करें वेलकम। तो जिस तरीके से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बहुत सी बातें आप लोगों से करेंगे, क्योंकि हम बातें नहीं करेंगे तो प्रोग्राम कैसे गुजरेगा, और बात हमारी बातें तो रौनक है प्रोग्राम की, ठीक है ना। तो आप लोगों की बातें शामिल होंगी तो प्रोग्राम ही हमारा आगे बढ़ेगा। आप लोग भी जल्दी से आ जाए, और मैं भी आ चुकी हूँ। तो जी अब शाम का ठंडा ठंडा सा टाइम है, ये कोई सर्दी गर्मी नहीं है, ठंडा ठंडा टाइम है। थोड़ी थोड़ी सी खुनकी सी आ चुकी है हवा में, ठंडी ठंडी से अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, और आप सब लोगों के साथ होती रहती है सारी बातें। चाय का एक कप उठा लीजिएगा साथ, हवा देती हुई चाय का कप, क्योंकि मेरी चाय भी थोड़ी देर में आ जाएगी।

सुन रहे थे, एंजॉय कर रहे थे एक खूबसूरत आवाज, इन्हें जमशेद की खूबसूरत आवाज थी जिनका ये सॉन्ग था, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा। तो जी बिल्कुल, ये तो खैर जिनको कह रहे थे, लेकिन हम तो बस पूरी गर्मी एक लफ्ज दे रहे थे। खैर मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, चेंज हो चुका है, तो इसमें अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत के बदलते हुए मौसम और बदलते हुए लोग बहुत तकलीफ देते हैं, वही बात है। तो इसलिए उनकी बार बार के अपना ख्याल रखिएगा और एहतियात कीजिएगा। तो जी बिल्कुल, मैंने आप लोगों से सवाल भी यही पूछा था कि ये अक्टूबर की ठंडी थी, ठंडी गर्म थी, शामें आपको कैसी

तो जी हम लोग बात कर रहे थे कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, तो क्या होते हैं हम उसी पर बात करेंगे। लेकिन अभी प्रोग्राम में टाइम हो चुका है, मैं सोच रही हूँ कि ब्रेक के बाद करेंगे।

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Remit, Bank Al Habib, Rishto Bharose Jo.
2: Agar khoobsurti
3: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

kecil ditinggal ni awak ingin kita berapa macam kita ingin ke kaki kandas berapa cah lakta hai जो है वो है भाई जो अच्छा लगता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए ठीक है ना. और जो चीज बुरी लग रही है आपको लगता है कि सामने वाले की शायद दिल आजादी होगी तो थोड़ा सा एहतियात करें, लेकिन अगर वो कुछ ज्यादा ओवर हैं और वो ज्यादा ही दूसरों को मतलब खुद से कमतर समझ रहे हैं तो फिर उनकी तारीफ नहीं करनी चाहिए बल्कि कह देना चाहिए उन्हें भी.

दोस्तों के कभी कभी किसी रास्ते से गुजरते हुए पुराने दिन याद आ जाते हैं, किसी सड़क पर चलते हुए गुजरे लम्हे साथ चलने लगते हैं, कुछ रास्तों पर हंसी गूंजती हुई नजर आती है, कुछ पर खामोशी का गुजर होता है, लोग बदल जाते हैं मगर रास्ते वही रहते हैं, और जब कभी फिर उसी रास्ते से गुजरना हो तो एक लम्हा ऐसा लगता है वक्त इधर ही कहीं बिछड़ा हुआ हो, वहीं रुक जाए या रुक गया हो। शायद इसीलिए कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, वो हमारी जिंदगी के वो बाप होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी मुकम्मल तौर पर भूल नहीं पाते। जी बिल्कुल, इतना यही बात।

लिसनर्स के साथ ही हमारे एक और लिसनर्स हैं और ये कह रहे हैं कि अच्छा इन्होंने लड़का ना से हमें ज्वाइन किया है, ये कहते हैं गुड इवनिंग हाय हाउ आर यू, तो जी शो इज वेरी नाइस, जाने की बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ अली ज्वाइन किया है। अच्छा जी, तो एक बात मैं आप लोगों से कहूंगी

मतलब जो है जब भी मतलब मैसेजेस कहना चाहिए 888-1 पर खास करके जब भी आप लोग करें ना तो आप लोग जो है ना प्रोग्राम का नाम या होस्ट का नाम लाजमी लिखा करें ताकि फिर वो हमें शामिल करने में भी आसानी रहती है। ओके जी, इसके साथ ही प्रोग्राम में टाइम हो चुका है 5:58, यानी बस अब एक घंटा गुजर गया और पता भी नहीं चला कैसे टाइम गुजर जाता है। तो जी बिल्कुल, मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ रास्ते रास्ते नहीं होते, तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं और आप लोग कैसे जो है इस शाम को सेलिब्रेट करें, क्योंकि आज तो छुट्टी का दिन है, आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी होगी, यानी कि मजे ही मजे हैं और खासकर स्कूल भी ऑफ होते हैं। ये देखें सैटरडे संडे स्कूल भी बंद, कभी कभी जो बचपन ने दुआएं हमारी मांगी हुई थी वो आज कबूल हो रही, कभी कभी होता था बचपन में आज स्कूल की छुट्टी हो जाए आज नहीं जाए तो दुआएं उस अब कबूल हो रही हैं। अच्छा कौन कौन ये दुआएं मांगता था तो ये हम इसे बात करेंगे किसी दिन, इस टॉपिक पर भी बात करते हैं। वैसे तो टॉपिक इसी भी देखिए याद अवस्था देंगे आपके स्कूल का टाइम आपको याद आने लगेगा। तो जी बिल्कुल, अब टाइम तो बहुत शॉर्ट नहीं है, अभी टाइम है हमारे पास भाई। मैं यही कहने वाली थी कि अभी टाइम हो जाएगा तो जाहिर की बात है 6 PM हो जाएंगे और मुझे एक लेना होगा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, लेकिन सबसे पहले न्यूज ब्रेक भी होता है जो मैं लाजमी लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी खबर से बाखबर रखना है हमें, आपको पता चले कि और क्या क्या चल रहा।

0: अच्छा बिल्कुल इस वक्त टाइम हो चुका है 6 PM और हमें लेना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक भी, लेकिन इससे पहले लेंगे एक न्यूज ब्रेक, उसके बाद आपके साथ कंटिन्यू करते हैं आवाज का रिश्ता।
1: It's 6 PM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow, hardiya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खत्ते की बनी है आवाज।
3: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
5: 44 साल जो तजुर्बो, हजारे मरीजन जो एतमाद, आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। 44 साल जी वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाबी अमराज, जोड़न जो सूर, मैदे में जलन, गैस, बदहजमी, तेजाबियत, गुर्दन जी पथरी, बवासीर, बे औलादी, वारन जो किरण, गंजपण, फॉलेज, खारिश, बेन मुख्तलिफ़ सेहत की तकलीफ़ लाए माहिराना होम्योपैथिक सलाह मुआसर इलाज फराम करे रहा आहिने। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर, पुलिस हेडक्वार्टर चौक।
6: खुश और बीरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावरन जो खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चावरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ 3 दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम आप प्रोडक्ट।
7: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
8: ब्रॉट टू यू बाय
9: सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम
10: आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।

हथियारबंदनि जी दुकान ते ॼणा क़तल, मारिजी वियलनि में पीउ ऐं संदसि ॿ पुट शामिल, इन में रजब गांगरो, संदसि ॿ पुट रियाज़ ऐं क़ुर्बान गांगरो शामिल, बिलावल गांगरो ऐं वाटहड़ू अब्दुल गोलियुनि जो खाज बणिजी विया। पुलिस जो चवण आहे त गांगरा बिरादरी जो मुख़्तलिफ़ बिरादरनि सां तकरार हलंदड़ आहे। गांगरा बिरादरी जी मारिजी वियल चइनि ॼणनि जो तालुक अकबर सां ॿुधायो पियो वञे ऐं मक़तूर पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं केपी ऐं बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं, 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब ॾखिण वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द खे निशानो बणायो वियो, जंहिं दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया। माशिकी हमले बाद फरार थी दहशतगर्दनि खे बि मारियो वियो। कराची जे शहरनि खे बहितर बुनियादी फराहम अमली कदम खणी

थाने समेत मुख्तलिफ़ गोठ बंद सेफ को चवण आहे त जेल पुलिस मुलाज़िमनि खे हिरासत में वरितो आहे। 11,000 केवीअ जी तार किरी पई जंहिंखे ठाहिण लाइ बिजली बंदि कई हुई।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306-244-7700।
7: अरे न खुश्क ऐं बीरोनो की स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं? तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिंमें आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरियुनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ 3 ॾींहनि में। जल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
8: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
9: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
10: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
9: GAFM नेटवर्क,
10: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

ओवरडिंग स्नैक्स को टाइम हो चुका है इस वक्त 6:29 यानी कि कट ये होने वाले कुछ 30 सेकंड जा रहे हैं तो जी बिल्कुल अब प्रोग्राम में टाइम हो गया आवाज के रिश्ते में एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का जाने के साथ ही मैं ब्रेक लूंगी और इसके बाद आप लोग के साथ कंटिन्यू करूंगी आवाज का रिश्ता एक खूबसूरत सी आवाज और खूबसूरत सी आवाज के साथ।

0: 6:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्ष अपनाए.
2: अरे मैं खुश्क और बीरोनों की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिन चावरन जो खूबियों ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐं चावरन जो खूबियों जिल्द मां फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन ऐं रिंकल्स के घट करे सिर्फ 3 दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
3: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
5: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
6: उसी खित्ते की बनी है आवाज
5: जीए FM नेटवर्क
6: सिंध की आवाज

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

साइंसी तहक़ीक ऐं तरक़ी खे बहितर तिबी नतीजनि में तब्दील करणो पवंदो। सिंध हुकूमत मयारी तिबी सहूलियतूं फराहम करण लाइ पुरअज़म आहे। कराची जिना अस्पताल में तकरीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर मुआद अली शाह चयो आहे त जदीद तिबी टेक्नोलॉजी ताईं रसाई खे वधाइणो पवंदो। सिंध हुकूमत सिहत वारे शोबे में सहूलियतूं ॾींदी। हथोदेरो में हथियार बंदनि जी दुकान ते फायरिंग, पंज ॼणा क़तल। मारिजी वेलनि में पीउ ऐं संदसि ॿ पुट शामिल। पोतियुनि में रजब घांगरो, संदसि ॿ पुट रियाज़ ऐं कुर्बान घांगरो शामिल। बिलावल घांगरो ऐं वाटड़ो अब्दुल्ला बिरोही बि गोलियुनि जो बुक भणिया। पुलिस जो चवण आहे त घांगरा बिरादरी जो मुख़्तलिफ़ बिरादरीअ सां तकरार हलंदड़ आहे। घांगरा बिरादरी जी मारिजी वियल चइनि ॼणनि जो तालुक हथोदेरो भरिसां ॻोठ वधापुर सां आहे ऐं मक़तूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं केपी ऐं बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं। 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ॾखण वज़ीरिस्तान में ख़ारजी दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो, जंहिं दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान जे माशकेल में पुलिस चौकी ते हमले बाद फरार थींदड़ 6 दहशतगर्द मारिजी विया। सिंध जे वकीलनि सूबे जे इम्कानी विरागे खे रद्द करे छॾियो। सिंध जी वहदत ते इम्कानी वार ख़िलाफ़ मुतहद थी जदोजहद करण जो ऐलान। हैदराबाद में नो मोर डिवीजन ऑफ सिंध जे उनवान सां ऑल सिंध लॉयर्स कन्वेंशन मुख़्तलिफ़ वार एसोसिएशन सां वास्तो रखंदड़ वकीलनि जे वॾे अंग में शिरकत। वकील अॻवाणनि चयो त सिंध जी वहदत ते सभु वकील मुतहद आहिनि। विरागो कंहिं बि सूरत में क़बूल न हूंदो। वकीलनि जे गॾियल हक़नि ऐं कानून जी हुकमरानी जे तहफ़ुज़ लाइ वकील बिरादरी मुतहद आहे। कंबट भरिसां नारेजा बिरादरी जी बिंदुरियुनि में झेड़ो, ॿ सगा भाइर क़तल। मौ समेत टे ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ हाजी उस्मान नारेजो में ज़मीनी तकरार तां धुरियुनि में झेड़ो थियो। महकुमुद्दीन नारेजो ऐं संदसि भाउ राशिद नारेजो मारिजी वियो। पुलिस मूजिबि ॿई मक़तूल सगा भाइर आहिनि। संदन मौ समेत ज़ख़्मी थियल टिनि ॼणनि जो इलाज जारी। कराची में मुतालबनि जी मजता लाइ डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी वटि एहतजाज कंदड़ शागिर्दनि ते पुलिस कड़की पई। लठबाज़ी 10 ॼणा गिरफ़्तार। मुंह मारी बाद अहलकारनि शागिर्दनि ते लठबाज़ी कई। पुलिस 10 खां वधीक शागिर्दनि खे गिरफ़्तार करे खणी वई। यूनिवर्सिटी जे तर्जुमान जो चवण आहे त धरणो हणंदड़नि यूनिवर्सिटी जो मुख्य गेट बंदि करे छॾियो, जंहिं करे शागिर्द उस्ताद ऐं ॿियो अमलो यरगमाल बणियल रहियो। डाओ डेंटल कॉलेज जो दरवाज़ो पिण बंदि करे मरीज़नि खे रोकियो वियो। धरणो हणंदड़ मुतासिर शागिर्द न आहिनि। पलीर में बलोचिस्तान जे अॻोणे सूबाई वज़ीर अली हसन ज़हरी ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जी रैली। PPMNA जाम करीम जोखियो सां यकजहती जो इज़हार। ठट्टो, सजावल, मीरपुर, साकरो, घारो, धाबेजी, काठोड़, कडाब, मलीर, दसाणो, छनो ऐं ॿियनि इलाइक़नि मां रैलियूं प्रेस क्लब पहुतियूं। बलोचिस्तान जे अॻूणे सूबाई वज़ीर अली हसन ज़हरी नारेबाज़ी। अॻवाणनि चयो त अली हसन ज़हरी लफ़्ज़नि ते माफ़ी न वरिती त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिपके चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फाइनली अब बनता है।
4: हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही है हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
3: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवा के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तवहां कें भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वही आहे तो उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदार रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by
2: Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
3: ये आत्मा आदमी वर्तवा है

0: आजकल इस्लामाबाद में काफी कुछ हो रहा है, हर सूबे के साथ जुड़े हुए और खास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा है, दहशतगर्दी का मुकाबला बलोचिस्तान में और पख्तूनख्वा में हो रहा है। अगर किसी वजह से वो इन दहशतगर्दों पे काबू नहीं हो सकते, उसके बाद उस दहशतगर्दी का असरात हमारा शहर कराची पे, तो इसलिए पाकिस्तान के लोग दहशतगर्दी को एक बहुत बड़ा अहम इशू समझना चाहते ही है कि हम सब मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें। और एक तो हफ्ते से वफाकी हुकूमत सफरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान की उस पार्टी से रास्ते में थे कि वो वफाकी हुकूमत ने अपना ज़हन बना दिया था और फौजी से तैयार था कि वो चाह ये रहे थे कि फौजी तौर पर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी नाफिज किया जाए और गवर्नर रूल नाफिज किया जाए। और जबकि गवर्नर रूल और इमरजेंसी एक आईनी हथियार है, जरूरत पड़े उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहां आपका एहतजाज एक हद तक बहुत कामयाब हो चुका, आप अभी पता नहीं 10 दिन से ज्यादा तो इस्लामाबाद में है या नहीं, इस्लामाबाद तो बंद पड़ा हुआ है और ये इल्जाम इन पे आ सकता है, वो साबित हो सकता है कि वो वफाक के साथ नहीं दे रहे, तो फिर हमें मजबूरन जो है इमरजेंसी या गवर्नर की तरफ शहर जाना पड़ता। तो उससे पहले हमारा कोशिश ये है कि आप पीटीआई से रब्ता करें, आप अपना जो कामयाबी है लॉन्ग मार्च का वो माने और आप इसको इस मार्च को अब खत्म करें।
1: केपी में इमरजेंसी जो फैसलो थी वियो हो, असा वफाकी हुकूमत के गाने लाए राजी क्यों, केपी हुकूमत दहशतगर्दी वाले मसले के अहमियत न दिनी और वफाक से सरकार न कहो तो मजबूरन इमरजेंसी या गवर्नर राज तरफ वनो पवे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में घणो कुछ थी रो है, 10 दिन का शहर बंद है, केपी में दहशतगर्दी वधी रही है, सूबाई हुकूमत जो समूरो ध्यान एहतजाज से है, केपी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे बाबत वफाक से वायदो करे, अफगानिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी पुठियां भारत जो हथ है, बलोचिस्तान जो भी हालतूं ठीक न आहिन, केपी में थींदड़ दहशतगर्दी जा असर सिंध ते भी पैजी रहा है, दहशतगर्दी पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है, उम्मीद है इस्लामाबाद में वेठल सियासी जमातू मसले जो सियासी हल कढ़ंदियूं।
0: और आज तक 1999 के जो वाटर रिपोर्ट थे उसे बरामद नहीं होता, खासतौर पर इस शहर कराची को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। कराची को वफाक में एक सफेला सबूत के साथ डील किया गया और हमारा हम शिकायत करें कहां से शुरू, गैस तो यहां इस सुबह में पैदा होता है, आपके आईन कहता है कि सबसे पहले हक उनका है जहां ये सासा ये रिसोर्स पैदा हो, महरूम रखा जाता है, फिर आपका मजाक उड़ाया जाता है कि देखिए इनके पास गैस नहीं है, इनके पास पानी नहीं, केफ्रो का मंसूबा आपने कब से सुनते आ रहे हैं, पिछली हुकूमत में हमने वजीर आजम के साथ एक मंसूबा रखा तो मैंने उसमें रिक्वेस्ट किया कि हमने बहुत सुना है आपका शिवाज स्पीड की जो नारा है और वो शिवाज स्पीड अगर कहीं जरूरत उसका है तो हमारा स्टेट फोर की मंसूबा में अफसोस के साथ मैं आज तक इंतजार कर रहा हूं। पूरी मुल्क में मोटिवे बन सकता है लेकिन किसी वजह से हैदराबाद फखर की बात आती है तो वो मोटिवे बन नहीं सकता, वो पार्टी ने वहां भी हमें मायूस किया। तो शिकायतें हैं या जो तनकीद है उसको सुनते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, सिंध का कराची का सियासत में भी जो गंध है उसको भी आप अपना काम से साफ कर।
1: सिंध के कदें भी मायदे मौजिब हिस्से जो पानी न मिलो है, कराची समेत समूरे सिंध पानी खोट के मुंह दे रही है, अपा कराची से मचली माह वारा सलूक किया है, कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की इफ्तिताही तकरीब का खिताब करे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है, जैसे शहबाज स्पीड की कें रिथा के जरूरत है तो वह केफो रिथा है, सूबाई हुकूमत सुठो कम कर रही है, सिंध में सियासी गंध के पैंजी कारकर्दगी से साफ कंदी। भारतीय बॉर्डर फोर्स की फायरिंग में बिन पाकिस्तानियों की शहादत से पाकिस्तान जो सख्त एहतजाज, भारतीय नाजिम उमूर पडेही ऑफिस तरफ एहतजाजी खत भी दिनों वो, हथे खाली शहरियन के दर अंदाज करार ॾियण बारे भारती कोशिश बि रद्द वाकियो बुनियादी इंसानी हक़नि ऐं हक़ ज़िंदगी जी संगीन वधकड़ी करार भारत खां ज़िमेवार बार्डर फोर्स जे अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो पॾे खाते मौजूदु भारतीय बार्डर फोर्स हथें खाली बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियुनि खे शहीद कयो। भारत बुनियादी इंसानी हक़नि ऐं आलमी कानून जी पासदारी यकीनी बणाए हथें खाली शहरियुनि ते बिना जवाब ऐं चिड़ ॾियारींदड़ ताक़त इस्तेमाल कई वई। अहिड़नि वाकियनि खे रोकण लाइ उपाउ वरिता वञनि।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
5: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
6: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
7: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
8: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
7: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
8: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
9: सुपर वाइट।
10: खुशखबरी। हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतिरा ई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि एक दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां खमीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुराणी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: अपोजिशन जिन्हें शर्त बाद हुकूमत अपोजिशन विच में गालिन दौरान डेड लॉक पैदा थी वयो आहे.
3: आजकल इस्लामाबाद में काफी कुछ हो रहा है और सूबे के साथ जुड़े हुए हैं और खास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा है, दहशतगर्दी का मुकाबला बलोचिस्तान में और पख्तूनख्वा में हो रहा है. अगर किसी वजह से वो इन दहशतगर्दियों पे काबू नहीं हो सकते, उसके बाद उस दहशतगर्दी का असरात हमारा शहर कराची पे हो, तो इसलिए पाकिस्तान जो दहशतगर्दी को एक बहुत बड़ा अहम इशू समझता चाहते हुए है कि हम सब मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें. और एक तो हफ्ते से वो पाकी हुकूमत सदर पाकिस्तान से और पाकिस्तान की उस पार्टी से रास्ते में थे कि वो पाकी हुकूमत ने अपना जहन बना दिया था और सौ तैयार था कि वो चाह ये रहे थे फौरी तौर पर पख्तूनख्वा एमरजेंसी नाफिज किया जाए और गवर्नर रूल नाफिज किया जाए. और जबकि गवर्नर रूल और इमरजेंसी एक आईनी हथियार जरूरत पड़े उसको इस्तेमाल किया जा सकता है. और जहां आपका एहतजाज एक हद तक बहुत कामयाब हो चुका है, आप अभी पता नहीं 10 दिन से ज्यादा तो इस्लामाबाद में है या नहीं, इस्लामाबाद तो बहुत बड़ा हुआ है और ये इल्जाम इन पे आ सकता है, वो साबित हो सकता है कि वो वफाक के साथ नहीं दे रहे, तो फिर हमें मजबूरन जो है इमरजेंसी या गवर्नर की तरफ शायद जाना पड़े. तो उससे पहले हमारा कोशिश ये है कि हम PTI से रब्ता करें. आप अपना जो कामयाबी है लॉन्ग मार्च का वो माने और आप इसको इस मार्च को अब खत्म करें.
4: केपी में इमरजेंसी जो फैसलो थी वो हो असा वफाकी हुकूमत के गाल राजी कर केपी हुकूमत दहशतगर्दी वाले मसले के अहमियत न डनी ए वफाक से सरकार न कर तो मजबूरन इमरजेंसी या गवर्नर राज तरफ वनो पवे. पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो सरदारी इस्लामाबाद में घणो कुछ थी रो आ 10 दिन का शहर बंद है. केपी में दहशतगर्दी वधी रही है. सूबाई हुकूमत जो समूरो ध्यान एहतजाज से है. केपी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे बाबत वफाक से मुआहदो करे. अफगानिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी पुठियां भारत जो हथ है. बलोचिस्तान जो भी हालतों ठीक न आन. केपी में थींदड़ दहशतगर्दी के असर सिंध से भी पेर थी रहा है. दहशतगर्दी पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है. उम्मीद है इस्लामाबाद में वेठल सियासी जमातू मसले जो सियासी हल कढ़ंदी.
3: और आज तक 1999 के जो वाटर रिपोर्ट पर उसे बरामद नहीं होता, खासतौर पर इस शहर कराची को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है. कराची को वफाक ने एक सतेला सबूत के साथ डील किया गया और हमारा हम शिकायत करें कहां से शुरू. गैस तो यहां इस सुबह में पैदा होता है. आपके आईन कहता है कि सबसे पहले हक उनका है जहां ये सासा ये रिसोर्स पैदा हो. तहरूम रखा जाता है, फिर आपका मजाक उड़ाया जाता है कि देखें इनके पास गैस नहीं है, इनके पास पानी है. केसों का मंसूबा आपने कब से सुनते आ रहे हैं. पिछली हुकूमत में हमने वजीर आजम के साथ एक मंसूबा रखा तो मैंने उसमें रिक्वेस्ट किया कि हमने बहुत सुना है आपका शुबाल स्पीड की जो नारा है और वो शुबाल स्पीड अगर कहीं जरूरत उसका है तो हमारा इसके फोर की मंसूबा में अफसोस के साथ मैं आज तक इंतजार कर रहा हूं. पूरी देश में वो तो वे बन सकता है लेकिन किसी वजह से अगर फखर की बात आती है तो वो मोटोवे बन नहीं सकता. वो पार्टी वहां भी हमें मायूस की तो शिकायतें हैं या जो तनकीद हैं उसको सुनते रहेंगे, अपना काम करते रहें करते रहें. सिंध का कराची का सियासत में भी जो गंध है उसको भी आप अपना काम से साफ करें.
2: सिंध के कदें भी मुआदे मूजिब हिस्से जो पानी न मिलो है. कराची समेत समूरी सिंध पानी खोट के मुंह डे रही है. वफाक कराची से माटेली माओ वालों सलूक किया है. कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इफ्तिताही तकरीब के खिताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन जो चवण हो तो जैसे शाहबाज स्पीड की कें रिथा की जरूरत है तो वह के फोर रिथा है. صوبائی حکومت سٹھو کم کر رہی ہے سندھ میں سیاسی گند کے پہلے ہی کارکردگی سے صاف کرداسی

0: हथ देरो में हथियारबंदनि जी दुकान ते फायरिंग 5 ॼणा क़तल। माजी विलन में पी ऐं संदसि 2 पुट शामिल। पोतियुनि में रजब गांगरो, संदसि 2 पुट रियाज ऐं कुर्बान गांगरो शामिल। बिलावल गांगरो ऐं वाटाड़ो अब्दुल्ला बिरोई बि गोलियुनि जो मुख बणिया। पुलिस जो चवण आहे त मक़तूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। वधीक जांच जारी आहे।
1: सिक्योरिटी फोर्सेज जूं खैबर पख्तूनख्वा ऐं बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं। 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियुनि मूजिब ॾखिण वज़ीरिस्तान में ख़ारजी दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो, जंहिं दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान जे माशकेल में पुलिस चौकीअ ते हमले बाद फरार थींदड़ 6 दहशतगर्दनि खे बि मारियो वियो।
0: सूबे जे इम्कानी विरागी खे रद्द करे छॾियो। सिंधी वहदत ते इम्कानी वार ख़िलाफ़ मुतहिद थी जिदोजहद करण जो ऐलान। हैदराबाद में नो मोर डिवीजन ऑफ सिंध जे उनवान सां आल सिंध लॉयर्स कन्वेंशन मुख़्तलिफ़ बार एसोसिएशन सां वास्तो रखंदड़ वकीलनि जे वॾे अंग में शिरकत। वकील वारनि चयो त सिंधी वहदत ते सभु वकील मुतहिद आहिनि, विरागी सूरत में क़बूल न हूंदो। वकीलनि जे गॾियल हक़नि ऐं कानून जी हुकमरानी जे तहफ़ बिरादरी मुतहिद आहे।
1: सिंध में सनतुनि जी तबाहीअ जो ज़िमेवार केर? नेब जांच शुरू करे छॾी। सनतुनि लाइ अलाट कयल प्लाट ऐं खातनि में थींदड़ भर्तियुनि जो रिकॉर्ड तलब। नेब लाॻापियल खाते खे लिखियल लेटर में चयो आहे त कहिड़े सेक्योरिटी दौर में केतिरा सनती प्लाट कमर्शियल सरगर्मियुनि लाइ इस्तेमाल करण जी इजाज़त मिली, कंहिं केतिरियूं भर्तियूं कयूं, समूरा तफ़सील ॾिना वञनि। साइट ऐं हैदराबाद में सनती प्लाटनि जी कमर्शियल इस्तेमाल ऐं भर्तियुनि जा तफ़सील बि ॾिना वञनि। KTN न्यूज़ जे प्रोग्राम द मिरर में छिड़काईंदड़ इंकशाफ़ साम्हूं अची विया।
0: गब्बर बरसा नदे जा बिरादरी जी ॿिनि फेरियुनि में छेड़ो, ॿ सगा भाउर क़तल। माउ समेत 3 ॼणा ज़ख़्मी। घोट हाजी उस्मान नारेजो में ज़मीनी तकरार तां धुरियुनि में छेड़ो थियो। महकुमुद्दीन नारेजो ऐं संदसि भाउ राशिद नारेजो मारिजी वियो। पुलिस मूजिबि ॿई मक़तूल सगा भाउर आहिनि। सदन माउ समेत ज़ख़्मी थियल 3 ॼणनि जो इलाज जारी।
1: मलीर में बलोचिस्तान जे अॻूणे सूबे वज़ीर अली हसन ज़हरी ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ बिरादरीनि जी रैली। पीपल्स पार्टी MNA जाम करीम जोखियो सां यकजहतीअ जो इज़हार। ठठो, सिजावल, मीरपुर साकरो, घारो, धाबे जी, काठोड़, दरसाणो, छनो ऐं ॿियनि इलाइक़नि मां रैलियूं प्रेस क्लब पहुतियूं। बलोचिस्तान जे अॻूणे सूबे वज़ीर अली हसन ज़हरी ख़िलाफ़ नारेबाज़ी। अॻवाननि जो चवण हो त अली हसन ज़हरी लफ़्ज़नि ते माफ़ी न वरिती त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
5: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
6: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
5: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
5: अच्छा, वेरिएंट सब चॉइस सबकी है।
7: सुपर वाइट।
8: खुशखबरी हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतिरा ई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि हिक दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां खमीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुराणी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।